0: आई एम गुल्ला भाई प्लीज फोन उठाओ ना स्वीट भाई, फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके सामने होगी। अस्सलाम वालेकुम, हे आयतुल्लाह फ्रॉम द टांग टांग में सिटी तंग बाजार बनूची होटल के नजदीक हमजा जनरल स्टोर में इश्मा के तमाम प्रोडक्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई, डेरा मुदाबाद तड़ा मशी और पखैर रागले Assalamualaikum, how are you? Welcome by Lucky Marwat FM 88 wale Rahat Khan Ijaz Bhai, Ijaz Bhai, Karam Bhai jikam deno brand de alhamdulillah.
1: Khud
0: Allah Taala jara ta da brand jikam deno barqarar lari. Assalamualaikum Ijaz Bhai Singh ye ustad sawal jawab de Ishma Rice Multani Mitti Marks aur Rice Bleach. Sabira Gul from Beautiful Banu. السلام علیکم اجاز بھائی، آئی ایم مسافر وزیر سنگھ خی برابری اشما آل پروڈکٹ زندہ باد اور بیسٹ آف

हाय हाय बीजीएम ना हो बाबरेदुन की सारा सब यही ना ओके जी बीजीएम नंबर होता है ना वो बीजीएम में सेलेक्ट करे रहा हो का चेत है तक है बीजीएम चला लश की मजदूर हुई और इधर को तबे मजा एर कड़ी खान एर कड़ी नो बयान से दागा ना बुधा प्रेर दोष हाँ तो कुछ और इधर को सिफात के तो सदा एक्चुअली प्रोडक्ट चिदा मिला भी जिससे फाद हर्बल शैम्पू आमला सिफात हर्बल शैम्पू ऑनियन सिफात हर्बल शैम्पू गलवन जिससे फाद राइस फेस वाश सिफात लेमन विटामिन सी फेस वाश सिफात ब्यूटी क्रीम सिफात कोल्ड क्रीम सिफात हिल क्रीम सिफात रेस अच्छा राइस क्रीम ब्लीच सिफात 24K गोल्ड एप्पल ब्लीच सिफात हर्बल जैतून ऑयल सिफात हर्बल स्किन स्प्रे सिफात स्किन क्रीम यानी के सनब्लॉक सिफात विटामिन सी सीरम इन अलावा जी एंड फ्यूचर एक्चुअली प्रोडक्ट से अगर रमोन दे पांडु नमाजे बते होला है मो बतो गुण की हो सकता है धीरे धीरे तो वगाने सिफात कॉस्मेटिक माशा जी सुमर हटीम दा है फुल बतो गानो की हो सकता है कला चे इंसान जवे चे चे जड़ा शशि दवो वसी चे जड़ा खशि दुवा वसी हाउ कैन सिफात एक्चुअली प्रोडक्ट से इस्तेमाल गए जड़ा मबखला दवा गाने गए जगह जड़ों बशे सी गना कुछ साल बस है रोसाई और इधर खोनन प्रोग्राम के तो से डेढ़ डेढ़ काल सीधे काश मिला हुआ और इन्हें लवाज जी सिफात सुमरह जी प्रोडक्ट जी आगे बरी की मैंने वालो नोर्थ मालूमात खोज ताली नोर्थ मालूमात के लिए हाथ से लवाल गोड़ी नौकाल का वाले जी सिफात हेल्पलाइन नंबर माने हेल्पलाइन नंबर मौजूद है जी 0313-57-65-005 0313-57-65-005 0313-57-65-005 शादी सिफात कॉस्मेटिक हेल्पलाइन नंबर रहा है काल पे कवल है सह मालूम मौको सुनी हुई दोस्तों मालूम चिरा मेलावेसी दिन अलावा फेसबुक वाले मीनावाल ची सुमरा दी अच्छा फेसबुक यूज कर भी आगा गोड़ी के बाद को जे वीडियो के होगो रो ऑफिसर फेस से दा सिफात कॉस्मेटिक मौजूद है फेसबुक माने फेसबुक सर्च बार तब लो चांद बोली कैसी सिफात कॉस्मेटिक तो डाउन मार दा सिफात कॉस्मेटिक ते जरूर शी जी लाइक है फॉलो है शेयर के फॉलो योर ओन दोस्तों नो सने फैमिली सने ऑल द के तो से सिफात तुम ना प्रोडक्ट है आगे बारी के एक्चुअली रिलेशनशिप मालूमात है हां कतल ऐसे जी रिजल्ट हां कतल ऐसे कमेंट्स जी आगादी मीना वालों कतल ऐसे अखवा जोरे दोनों को पदी फेस के सो कतल ऐसे सी जी इमेज कदरदान नजवले देर खोज भाई जान आगा खतो से दी पेज के कतल ऐसे वीडियो के यानी के सो फॉर्मोडेल ग्रोंदा शाह माशाल्लाह इंतहाई रोमाने ग्रोंदा वैसरा मिलाव है ना खोबिया रोमाने ग्रोंदा जगह दे जगह इंसान जिकी मल हज़ादा जगह जिकी मल अल्फाज चुनाव दी माशाल्लाह वो मोह इंतहाई शलेगी पावरी दुन को बहुत डेर शलेगी जैसी वो पर्सनालिटी दाग है ना यकीन वस होता है जने जने खलक दास हुई आगाज वड़े ते बख्पल अर्निश दिखे रही कहता है नर्निश दिखा रहे नो दोर निश दिखे रही नो दागा पर्सनालिटी दा माशाल्लाह चर तभी खुशाला दियो सी दिमिज है खुश जो अगर खमकार ये सिफात कॉस्मेटिक पाकिस्तानी वा हिसा और दीर अदरना हिसा जी आगत वे लिखी जी आर जे हतर जान जगह जी जगह सिफात कॉस्मेटिक जगह फेसबुक पेज के तो से हतर जान भाई वीडियो चिरा का तला से ये प्रोडक्ट बारी के जी यो जहान मनना है काल भी शामिल हो प्रोग्राम के ढेर ढेर काल और सूल जो भी रुकवाए सा कमो न चिता ईर्ष्या करना पखपल है रुकवाए चेकन हर काल कवाए नो भी आधा सूल जो बो तो से खपल और तो शायद चिता का सूल जो दे शाम और दिस सिफात का समय तरफ ने दा खुश वाले प्रोग्राम चिता मिश्ता पेश कीजिए नो कोशिश कवाए चावरी दुन को ता यो खुश आते मैसेज दा गा हमेर कवाए दे प्रोग्राम हवाले सारा है सलीम कटे हेल से सलामुना एहतरामात आवूज में बोर वे चिता मियर ता होने भी लोड हाँ मियर ता मदराम सलीम कटे हेल से वे डलाए वे सुमरा हमी नवाल ले वो डलाए वे नवी शिरू ना वो प्रोग्राम का जजार की बोशा मिला उशा से लश की लशी तशा मिला वो को दाने भी शिरू नहीं वी वही चे जमाद अद्वार उस तुर्गु तोर ला लिया जमाद अद्वार उस तुर्गु तोर ला लिया जड़ा कि मैं निश्चित था नूर जोर ला लिया
او نزون اوڑا خو چی پختو پریگ نده یا نزون اوڑا خو چی پختو پری نگده او دا ناسی حد زما دا مور لالیا

होय होय कधी हेल्च वयचे सदफदल तमे झडगी तरीके सर न पड़े दयार पकली जमा दार कर रद्रूमी कधी हेल से जहान मानना सलीम कड़ी हेल वैसे हाल लेस नर तमें दुआ सलाम जी कड़ी हेल से जहान मानना ये प्रोग्राम सर और वही हर रोग या मासिकर ले बने के गम ताचिने भी नम अक्सर ले बने के गम माद अखबल कलीना मऊ बसा या रास्ता दकलीना बाहर ले बने के गम हिकमत जी हिकमत यो जहान मरना थैंक यू सो वेरी मच एक्चुअली शिवना वजह सलाम वालेकुम जनाना हाल तब में हेर से चिदल हाथ खावरों की खेक नम मंदुना पीर इसरार एंड मतियुल्ला शेख गड़े ना यो जहान मरना देखांगना थैंक यू सो वेरी मच जी पीर से और मतियुल्ला से यो जहान मनो मगाओ वही सलाम भाई हाउ आर यू शो इज नाइस आंसर अच्छा वही कहना चिदा हो खुद खुद परिंदा है ना वही आई एम बुशरा बुशरा हो रखे यो जहान मनना कि तो से खबर जहान जिदा लड़ा हुआ मैं तो जॉब रोक लो दूसरा और वह अखरे के जॉब दिखाओ मुझे हमोश तनहा आदे मो और जहन खुदा यही कहना छे हर परिंदे मतलब सर पर पाव होते हैं और कि जी हमोश तनहा यो जहान मानना वही अरी से यमा ना चाचू दस्ता दिनन कचरता विश पसदका के बखपल जान कुर्बानोमा सलाम में कबूल का बैजानी अरीशा खटकिया हिना अफरीदी दाओ क्यूट रुचि खान था हम सलाम अरीशा यो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच खुरक है और तासो सवाल वाला जवाब हर परिंदा रे जिसके सर पर पाव होते हैं मतलब हर परिंदे के सर पर पाव होते हैं और पाव भी अच्छा वही कहना गुललाई अमा दछांगना गुललाई यो जहान मनना खुरक है थैंक यू सो वेरी मच हम नेक्स्ट वही सलाम भाई टांग से अनस खान आपके सवाल का जवाब वो परिंदा है ये क्या जवाब हो गया अनस यो जहान मनना दछांगना वही भाई हगा हगा दिसंबर वाला सांग वाला गवा तासु शो के मोयवा और दल यो जला और दल और दा सांग छे पनिट सच कहू ब्याबा असलिकुम और गुलाला यमा दठांग नाम अच्छा दठांग का मिया लाल आई थिंक का बिल्कुल दाजुई निकल ना भाई गुलाला है और अके जिटे मनो तो मिलाओ छी भी ही भी देता नशर का कदा प्रोग्राम ने हो नो रे प्रोग्राम ने हो टांग कलर दुन की मोसरा उदाई हो हे जब सबो तो भी आए इंशाल्लाह शो की जदा कुछ अर्ज कौन सही उस टाइम रो सहा दमदा बिल्कुल नेट के तो से यूट्यूब के वाली गए लगा सांग जी सर्च करवाए दिसंबर सांग वाली का है और इस तरह करण हान वाली का है वाई साफ करण हान ठीक था तरुबुशी और देसरा नेक्स्ट वाई जे सलाम भाई संग ये वाह वाह द बीजीएम वही छे भाई वसीले जन्नत हिन अफरीदी कहा सलाम कशफ यो जहान मनना रकीबो यो जहान मनना मलक से इंजी नना वही छे करक बाजार ना ठोलो टांक अवरी दुन की करक अवरी दुन गोदा स्पेशल सलाम नव अवरी दुन गोदा औ पुराने अवरी दुन गोदा औ सलीम गटी हेल साहब दा स्पेशल सलाम रकीब यो जहान मना रकीब हडक मेरी प्यारी बीटी अजवा बीमार है उनको खरक बाजार लेकर आया हूँ राज भाई हाय हाय हाय अजवा बेचा अल्लाह पाक ता पूता चली से तू नहीं देर गई रकीबो परेशान के जमा मौसम चेंज कीजिए और दगा बड़ी बड़ी बीमारियां निरसी अजवा ट्रीटमेंट होगा आज वो बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक से या अल्लाह के फजल करम सलाम ओचे खामोश तन्हा के हर प्रोग्राम में जब उठाता ओके जी थैंक यू सो वेरी मच वाशोला रुतावोस है रकीब भाई सलाम राज भाई रकीब हटा क्या लकरक बाजार ना उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मां वही जी सलाम टू ऑल टीम जी करक जिसमें टीम दा रेडियो टीम और टैंक जिसमें टीम दा जी रखी भाई जहान मानना वही मैं हूँ ओके जी थैंक यू सो वेरी मच दे मैसेज का वाले वही सलाम हमदर्द जब बिल्कुल ठीक ठाक है जी उम्मीद रिश्तों से ठीक हुआ यो जहान मानना सो खोजो रिदुन को कदी छा मैसेज रुना होते सवाल कोशिश में ओकर लो
دینا پاس بیا میسج مارو تا کوای نن پروگرام حوالے سر زکه کنا پروگرام ختم جی تو سی میسجونا ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ بس بیا روسی او بیا تو سے خفا ہوئے کہ راز بھائی میسجونا نہ کر شامل نوی پروگرام تھا بیا نوی میسجونا او کہ میسجونا مواکڑا خیر دے میسج گوائے سب پوچھتا نہ مگونی ہوئی صفات کاسمیٹک پروڈکٹ بارے کے معلومات ہوتا ہے میسج کا ہے اس خبر ہے نا اور پروگرام کے بیا خپوتی سی سا کے ٹائم ختم شیم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन हज़रात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आज अमस अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है। बिल्कुल जनाब, आपका मेजबान आरजे अमस अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है प्रोग्राम सेहत का पैगाम लेकर, जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। बिल्कुल खवातीन हजरात, अलशिफा दवाखाना एक ऐसा मोतबर नाम, एक ऐसा इदारा जहां पर हर किस्म बीमारी का देसी तरीका इलाज से मुकम्मल सफाया किया जाता है। एक ऐसी बीमारी का जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो उस बीमारी से, सो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट नज़्द, ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। बिल्कुल खवातीन व हजरात, उम्मीद करता हूं आप तमाम सुनने वाले जहां भी होंगे, मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, खैर वाफियत से होंगे। चूंकि अभी खाने का टाइम है, सो आप खाना भी खा चुके होंगे या खाना खाते खाते आप हमारा शो भी साथ सुन रहे होते हैं। इसके अलावा जो मुसाफिर भाई हमें सुन रहे हैं, चाहे आप टांग से हैं, चाहे आप वजीरिस्तान से हैं, चाहे आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम आपका है और इस शो में बात होती है आपकी सेहत की। आपके जो सेहत के हवाले से सवाल होते हैं उसके बारे में हम बात ये करते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के हकीम साहब से कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, सो हम जो सवाल सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं फिर हम एक ऐसा मखसूस शो उसके ऊपर रखते हैं जिसमें उसी बीमारी के बारे में बात की जाए। तो बिल्कुल खवातीन हजरात, एक अमूमन मसला जो बहुत ज्यादा पाया जाता है, आजकल बच्चों को भी है, नौजवानों को भी है, बुजुर्गों को भी है, बहनों को भी है, भाइयों को भी है, यानी कि हर किसी को यह मसला दरपेश है, वो है सर का दर्द। देखिये जी, सर का दर्द एक ऐसी चीज है, जब आप पूरे दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, चाहे वो बहनें हैं अपने घर का काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कभी धूप में होती हैं, कभी छांव में होती हैं, जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, यानी कि जब हम रात को सोने लगते हैं या हम आराम से बैठते हैं, तो अक्सर हमारा सर दर्द करने लग जाता है और उसका जो शॉर्टकट मारा जाता है वो चाय होती है।

0: अक्सर ऐसा ही होता है हमारे घरों में कि जब भी किसी को सर के दर्द की शिकायत होती है तो वो फौरन ही जो है ना चाय का कप पी लेता है। तो बिल्कुल खवातीन हजरात, आज हम सर दर्द के बारे में बात करेंगे। सर दर्द की फिर और बहुत सारी अकसाम है। एक आधे सर का दर्द होता है जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। सर दर्द की वजह से आंखों में दर्द होना, आपके पूरे जिस्म में दर्द होना, आप यानी कि अगर आप स्कूल पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, आपको उस चीज की तरफ दिमाग ना जाना, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका जो सर है आपको ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन जो है वो सर में चल रही हो, ऐसा लगता है, इस किस्म का शदीद दर्द होता है। तो आज इस दर्द के बारे में हकीम साहब से पूछेंगे कि जो सर का दर्द है इसकी असल में वजूहात क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है, हम ऐसे ही अपनी जिंदगी में कौन सी जो है गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें यह मसला दरपेश है। बिल्कुल जनाब, जिन्हें इस तरह की भेड़ियां बिना मैं तो सुन दे पैन तो आपको मैं प्रोग्राम भी वेलकम आदा। तो ये प्रोग्राम तुरी खिदमत अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन अल पेश कीता पिया वेंदा जेड़ी के शवाल मार्केट के अंदर मौजूद है। बिल्कुल जनाब, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। इंशाल्लाह हकीम साहब कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होंगे और मरीजों का जो चेकअप मुआयना है वो जारी रहेगा। आज भी हकीम साहब अपने क्लिनिक पर मौजूद थे और आज की तरह कल भी मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मुआयना जारी रहेगा। बिल्कुल जनाब, दीन अलग सुमरा हम पुख्तनाजा प्रोग्राम वाल भी सासो चोलत अहम प्रोग्राम की हर खिले वाया माओ ग्रहण वालुन को अदा प्रोग्राम सासो बखिदमत के अलशिफा दवाखाने दखसूसी ताउन सरा पेश को। बिल्कुल सर, आप ग्रानो आयुर्वेदन को योद्धा से तरीका इलाज इच किस्म हम साइड इफेक्ट नश्ता अखीर वेले की देसी तरीका इलाज हर्बल तरीका इलाज कम से कम जुड़ी बूटियों में जोड़ छे भी और दा इलाज बस्ता सुध मिलावी की अलशिफा दवाखाने बांधे अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी के और नन प्रोग्राम की बमुंगा खबर को द सर दर्द बारे वली चे द सर दर्द शिकायत नन सबा अवर को तो हमस्ता सर तो हमस्ता खोयान तो तबरूम तो टूल तो दा मसले बचे कल स्पेस संभाली या कल सांस कम बॉडी का रिलैक्स कीजिए बस सांस जे सर के डी ज्यादा दर्द हो सी और डी बारी के बना नकीम साहब जरा खबर ये तरीको और वकीम साहब तासु दबदी वाली इलाज हम खई एहतियाती तदबीर हम खई। बिल्कुल सर, आपके सासु चीरे सेहत वाले सर सवाल भी सास हकीम से उन्होंने तो पोस्ट को बल वाणम। बिल्कुल सासु मालिक हाल केवल 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- کے ولے سے. سو بالکل لسنرز, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹان کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کی خصوصی تاؤں سے یہ صحت کا پیغام آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 تک پیش کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں, سو ہمارے ساتھ آج بھی آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں, ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ.
0: جی جی حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟
0: اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب, آپ کی دعائیں ہیں, ہمارے سننے والوں کی دعائیں ہیں.
1: بالکل.
0: آج کا دن حکیم صاحب کیسا رہا؟ آج ٹھنڈا دن رہا ہوگا, موسم
1: کافی موسم چینج ہو گیا ہے, راتیں اب ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور اس موسم کا اثر جو ہے ابھی وہ ہماری باڈی پہ بھی
0: ایسے اثر انداز ہوتا ہے. جیسے موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو درد بڑھنے لگ جاتے ہیں, ہمارے شران ہیں بڑے ہیں,
1: درد کے علاوہ گلے خراب ہیں, بخار, یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تھوڑا سا اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے, اور موسم تو بخیر بدل جائے گا تھوڑے دن بعد مکمل طور پر, جب موسم سرد ہوگا تو کافی حد تک جو مرض ہیں وہ بھی کنٹرول میں.
0: ایسی بات ہے, ایسی بات ہے. لیکن صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ یعنی کہ سر کا درد, پہلے تو ہم دیکھتے تھے جو ہمارے بڑے تھے یعنی کہ 40 سال سے ان کو سر کے درد کا مسئلہ ہوتا تھا, آج کل تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے, سو اس کی کیا وجوہات ہیں اور سر درد کی کتنی اقسام ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا.
1: وجوہات جو ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے شیڈول خراب ہوئے ہوئے ہیں, ہماری روٹینز جو ہے وہ نہیں ہے صحیح, ہمارے کھانے کا, ہمارے ایکٹیویٹیز کا, ہمارا تقریباً اوور ہال دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں اپنی لائف میں. یہ چیز جو ہے پھر تھوڑا سا اثر انداز ہوتی ہے, ٹینشنز ہے, ڈپریشن ہے, اور कुछ हालात ऐसे हैं, हर चीज पे देखना पड़ता है, तो वो फिर जाहिर है हम लोग ज्यादातर फिर अपने पे लेते हैं। जब अपने जहन पे उस दबाव को लेते हैं तो फिर उसके असरात तो आने हैं,
0: ऐसी बात है।
1: और इसमें बस यही है कि जहां तक है आप कोशिश करें कि करना तो कुदरत नहीं है, लेकिन बहरहाल हद से ज्यादा भी अपने पे बोझ ना लें, कोशिश करें कि जो एक उसका प्रॉपर हल है वही रखें। अब बाजे अक्सर पेशेंट भी आए हैं मेरे पास, अक्सर के मैसेजेस या कॉल्स भी आ जाती हैं,
0: ऐसी बात
1: तो उसके मुझे सर दर्द की शिकायत है,
0: ऐसी बात है।
1: और हम लोग इसे बड़ा मामूली लेते हैं कि ठीक है यार एक गोली खा लेते हैं वक्त की, चाय का कप पी लेते हैं तो बस वक्ती तौर पर सुकून आ जाता है, हम फिर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। तो अब अक्सर कहते हैं कि यार कभी हमारे माथे में दर्द हो रहा है, कभी सिर के एक तरफ हो रहा है, कभी पूरे सर में, कभी आधे सिर में, कभी आंखों के पीछे, और कभी दर्द हल्का होता है, कभी तेज हो जाता है कि हम काम भी नहीं कर सकते। तो आखिर उनका भी सवाल यही होता है कि इसकी वजह क्या है, या फिर यही है कि हम आर्थिक तौर पे टैबलेट ले लें ताकि हम अपने उस वक्ती तौर पे जो हमारे काम अधूरे हैं,
0: ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है कि हम कर लें। मतलब कि इतना फास्ट जमाना हो चुका है कि हमें अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं है, हर बंदा चाहता है कि बस फौरन गोली खाएं और जो हमारा मसला है वो ठीक हो जाए।
1: हाँ उसकी वजह है ना, क्योंकि जाहिर है आज अगर आप फास्ट रहेंगे,
0: ऐसी बात है,
1: तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर या कह लें इस जिंदगी की दौड़ में शामिल रहेंगे, अगर आप सुस्त रहेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे।
0: सब वो मैं नहीं कह रहा कि यानी कि आपको जमाने के साथ चलना चाहिए, लेकिन आपकी अगर सेहत एक चीज से मुतासर हो रही है, अब आपका सर का दर्द है आपको डेली रात को होता है, आप डेली एक गोली लेंगे तो आप ठीक होंगे, लेकिन हमारे लोग ये नहीं सोचते कि इस मसले से मुकम्मल जान छुड़ाई जाए।
1: वजह यही है ना कि आप उसकी वजूहात पे तो गौर करना होगा ना,
0: ऐसी बात है,
1: उसकी वजूहात पे गौर करें और फिर आप अपने मुआलिज से मशवरा करें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और आप इसे किस तरह इससे जान छुड़ा सकते हैं, और ये दर्द हकीकत में है कौन सा,
0: ठीक है,
1: पूरे सर का है, आधे सर का है, या थकावट है, क्या वजह है, फिर उसको देख के उसके मुताबिक उसका इलाज है, और देसी इलाज बहुत सूटेबल है कि वो आप उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: कई दफा मैंने प्रोग्राम में भी कहा है कि आप उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप फायदा ले सकते हैं, बल्कि जो कह ले टेम्परेरी टेबलेट्स हैं
0: ऐसी बात
1: उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे आप बच जाते हैं,
0: क्योंकि वो हम रेगुलर लेते लेते हैं,
1: बिल्कुल हम उसके आदी हो गए हैं,
0: ऐसी बात है।
1: हम लेते हैं तो जस्ट चंद सेकंड के बाद हम कहते हैं हम बेहतर हैं,
0: ऐसी बात है।
1: तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर उसमें आदमी कहता है यार मैं अपने काम पे बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर पे हूँ या मैं मोबाइल में हूँ, तो फिर मेरे लिए दुश्वारी है। तो बाकी देखना क्या है कि ये इसके वजह क्या है और किन असाब पे दबाव है जिनकी वजह से इसके सर में दर्द है, उसकी नोयत, उसकी शिद्दत, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके गर्दन के पट्ठों में खिंचाव है,
0: ठीक है,
1: इसकी वजह से है। अब हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो,
0: ऐसी बात है।
1: अब चीज ये है कि ये सारी चीजों की जब तक आप मुआलिज से मिलेंगे नहीं, उस टाइम तक इसकी तशीस नहीं की जाती,
0: ठीक है।
1: बाकी अब वजूहात में आ जाए तो वो शॉर्टली जो आम कॉमन हैं वजूहात, वो तो वही है कि आप रात को लेट सोते हैं,
0: ठीक है, ऐसी बात है।
1: और ये भी है कि आप अगर 10 बजे के बाद सोते हैं तो फिर आपका जिस्म हीट पकड़ेगा,
0: ऐसी बात है।
1: एक टाइम है आप एक उसकी एक टाइम तक आप सो सकते हैं, लेकिन जब आप लेट करते हैं तो फिर आपके लिए वो मसला बनेगा, नींद पूरी नहीं होगी तब भी, और बहुत ज्यादा जहनी दबाव ले लेंगे तब भी आपके सर में दर्द रहेगा, आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देर तक बैठते हैं तब भी, आप आंखों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं स्क्रीन पे यानी के जमाए रखते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: तो फिर भी उस पर असर आएगा आपके दिमाग पे, फिर पानी कम पियेंगे तब भी आपके सिर में दर्द हो सकता है,
0: ठीक है।
1: खाना आप टाइम से नहीं लेंगे, आगे पीछे करेंगे वक्त को, तब भी मसला बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी आप पी रहे हैं,
0: ऐसी बात है,
1: तब भी मसला बनेगा, और आप उसे अचानक छोड़ेंगे तो भी मसला।
0: अच्छा हकीम से, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सर में दर्द हुआ तो हम اس کے پیچھے ایز اے میڈیسن چائے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ.
1: بالکل.
0: تو یہ کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر ڈیلی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, اب ایسے پیشنٹس ہیں جن کا ریگولر رات کو درد ہو جاتا ہے سیم ٹائم میں, تو وہ چائے کا استعمال کرتے ہیں, تو اس کے کوئی نقصانات ہیں یہ بتائیے.
1: آپ اسے اگر کنٹینیو ہی رکھتے ہیں اور روزانہ اس کا اپنے ایک روٹین بنا لی ہے, ٹھیک ہے, تو اس وہ تو مرض اپنی جگہ پہ قائم ہے. آپ وقتی طور پہ تو ریلیکس ہو جاتے ہیں چائے پی کے,
0: ایسی بات ہے,
1: کچھ ایسے اجزاء ہیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن اس کا پراپر حل نہیں ہے تو وہ نقصان دے گی بہت زیادہ.
0: ایسی بات ہے, کیونکہ جب بھی گھر میں اکثر یہی ہوتا ہے کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ایک کپ چائے پلاتے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. ایسی بات ہے,
1: ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہے نا چائے, وہ تو ہم باہر سے جائیں یا آئیں طلب ہوتی ہے کہ یار ایک کپ چائے مل جائے,
0: کیونکہ چائے ایک روایت بن چکی ہے ہمارے گھروں میں. جب کوئی مہمان آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے سو چائے پلائی جاتی ہے,
1: وہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے.
0: حصہ ہے بالکل, ایسی بات ہے.
1: اور اس کا بہترین, بس ہم نے اس کو اب دودھ ڈال کے اس کو چائے بنا لیا, حالانکہ اگر ہم اس کو, کل بھی ہماری بات
0: اسی
1: چائے اس طرح نہیں ہے, چائے کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم لوگ اسے پتی پانی میں ڈال کر خوب اسے پکاتے ہیں, جس طرح ہوٹلوں والے دے پھینٹ رہے ہوتے ہیں, تو چیز کہ وہ بس کہہ لیں کہ چائے نام کی ہے,
0: ایسی بات,
1: ٹھیک ہے, اس کی افادیت اتنی نہیں ہے,
0: ایسی بات ہے.
1: اب باقی اس کے ساتھ جو ہے کہ تشخیص جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جسے ہم کہہ لیں ٹینشن ہیڈکس, یہ بھی سر کے ایک درد میں ہی ہے,
0: بالکل بالکل,
1: ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے اس کی قسم کہہ لیں, اب بعض دفعہ وہ سر کے گرد پٹی باندھ لیتے ہیں بڑی ٹائٹ قسم کی, اور کچھ کوئی مالشیں کر رہا ہے, کوئی سے دبا رہا ہے کہ یار یہ چیز ہو, لیکن اصل میں اس کی وجوہات دیکھیں کہ اصل میں وجہ ہے کیا, مستند معالج سے کسی سے مشورہ کریں اور اس کا پراپر حل کریں. سر کا درد ہے, نارملی ہے, کامن ہے, عام ہے, ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. سرد ہوا لگی تب بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہت زیادہ شور و غول ہوا تب بھی ہو سکتا ہے.
0: ہاں جی,
1: لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ایک پراپر اس کا ایک سولوشن نکلے,
0: ٹھیک ہے,
1: عارضی نہ ہو, مستقل ہو, پھر آپ اپنا ذہنی دباؤ جو ہے کم سے کم لیں. سوچ فکرے ہر شخص کے ساتھ ہیں,
0: ایسی بات,
1: لیکن آپ اس کو اپنے پہ سوار نہ کریں. جب آپ سوار کریں گے وہ آپ کے سر درد کے طور پہ سامنے آ جائے گا,
0: ظاہر سی بات ہے.
1: پھر آپ مسلسل کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کریں, تھوڑا سا اگر بالفرض ہے کئی ہمارے ٹیلر حضرات ہیں, درزی ہیں,
0: ہاں جی,
1: وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم جو ہے مسلسل بیٹھے ہیں تو وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھے جاتے ہیں,
0: ظاہر سی بات,
1: مشین چلا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں گپے مار رہے ہیں, وہیں چائے چل رہی ہے. اس میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ بیچ میں کوئی 10-15 منٹ کے لیے اٹھ کے ذرا تھوڑی سی واک کر لیں, تو یہ چیز ان پہ کافی ان کی باڈی پہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. مسلسل کام جو ہے یہ بھی سر درد کا باعث بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے کہ ہمارے بیٹھنے کا انداز, بعض دفعہ ہم اپنے جسم کو مروڑ تروڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس پہ بھی ہمارے اعصاب پہ, ہمارے پٹھوں پہ دباؤ آتا ہے, خون جو سرکولیٹ کر رہا ہے اس کی سرکولیشن میں بھی فرق آتا ہے, تو پھر وہ بھی سر درد کا باعث بن سکتا ہے. پھر نیند کی کمی تو ہے ہی ہے, وہ تو ہماری روٹین بن گئی ہے, ہم نے لیٹ نائٹ سونا ہوتا ہے, وہ بھی وجہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تھکن, کام میں ہم اتنے رہے کہ ہم نے اپنے وجود کو حد سے زیادہ تھکا لیا,
0: بالکل ایسی بات ہے,
1: یہ چیز بھی جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. آگے چلیں تو اسی وجہ سے ہی بعض دفعہ مائگرین کا مسئلہ بن جاتا ہے, درد شکیقہ یا سر کا درد ہے. اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ اس میں اور مکمل سر کے درد میں کیا وجوہات ہے, کیا اس میں ہم کس طرح کمپیئر کریں گے,
0: ایسی بات.
1: اسی لیے معالج سے مشورہ ضروری ہوتا ہے, حالانکہ سمٹمز ہیں, سمٹمز سے بندہ پہچان سکتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا جو مائگرین ہے یا عام آدھے سر کا درد ہے یہ عام درد سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے,
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: ان میں ایک کہنے کے وامٹنگ کی سی کیفیت ہوگی, مچھلی کی کہنے کیفیت معلوم ہوگی, روشنی سے وہ دور بھاگے گا, وہ کہے گا یار میں تھوڑا مجھے اندھیرے جگہ پہ مجھے کریں, کمرے میں اندھیرا کریں, پردے کریں, मैं थोड़ा सा अगर वो इर्द गिर्द लोग हैं तो वो उनसे थोड़ा सा साइड मारेगा,
0: ऐसी बात है जी।
1: वो सुकून चाहेगा, शोर से भागेगा दूर। ये माइग्रेन के उसकी जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स हैं।
0: हाँ जी ऐसी बात,
1: वहां से जाके। और दूसरा फिर ये है कि जरा कोई काम करेगा तो अपने जिस्म में दर्द महसूस करेगा, और बाज दफा तो उसे ये जो बू वगैरह या स्मेल कह लें इससे भी वो एलर्जिक होता है। वो कहता है मैं इससे दूर हूँ,
0: चाहे वो अच्छी हो या
1: चाहे अच्छी है या बुरी है। बुरी से तो खैर दूर होनी होना, लेकिन अच्छी भी जो है
0: वो भी सर में दर्द,
1: वो भी उसके लिए तकलीफ देगी। वो कहेगा मेरे सर में दर्द शुरू होना शुरू हो गया, और इसीलिए जो है वो थोड़ा सा वाइट करेगा।
0: ऐसी बात है,
1: आंखों के गिर्द बाजू का तारे से झिलमिल झिलमिल से या अंधेरा सा आना,
0: ऐसी बात है।
1: ये चीजें हैं तो उस पे फिर जो मुआलिज है वो उसको कंपेयर करता है जब उसके सिम्टम्स या उसकी केस हिस्ट्री लेता है कि ये आधे सर का दर्द है, इस सिम्टम्स के मुताबिक फिर उसका इलाज है। और इसकी वजह से बाज दफा ये होता है कि हम क्योंकि नजर हम मुसलसल अपनी इस्तेमाल करते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: बाज औकात हम उसे प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करते, तो नजर में कमजोरी, जिस तरह पहले वक्तों में लोग सुरमा डालते थे,
0: बिल्कुल डालते थे,
1: माएं खुद ही डाल देती थी बच्चों को, वो बच्चों को बचपन से ही आदत हो जाती थी, बड़े पन तक वो आंखों में सुरमा लगाते रहते। अब भी ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो अभी भी सुरमा इस्तेमाल करते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: उससे आंखों की रोशनी, आंखों की ताजगी बरकरार रहती है और उसकी आंखों की थकावट नहीं होती। और इसकी वजह से भी जब आंखों में कमजोरी आएगी नजर में तो इसकी वजह से भी सर दर्द रहेगा।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: अब उसके लिए भी वो मशवरा करेगा, देखेगा अपने आप को कि यार मेरी नजर वीक हो रही है। तो इस लिहाज से सर दर्द जो है वो एक वजूहत नहीं, कई वजूहत हैं।
0: ठीक है
1: कि आप उसमें देख सकते हैं कि मेरे सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, उसके मुताबिक फिर सर दर्द का इलाज होता है। सर दर्द तकरीबन 70-72 किस्म का है।
0: अच्छा, 70-72 किस्म के अक्साम है सर के दर्द?
1: अक्साम है। अब उसमें नोट करना होता है, खाली हम एक पेनाडोल या पैरास्टामोल खा के तो हम वक्ती तौर पे तो सर का दर्द दूर कर लेते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: लेकिन बाद में जब वो होता है तो काफी बहुत शिद्दत से होता है और बाज दफा वो कोई नया ही मर्ज जो है वो क्रिएट करता है सामने।
0: ठीक है।
1: फिर इसी वजह से बाज दफा ये कह लें कि जिनको नजला जुकाम रेशे बलगम की शिकायत होती है वो भी सर दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, उनको भी सर दर्द होता है। अब उसमें भी तशीस करनी होती है कि यार ये इनको नजला जुकाम है, कब से है, इनका रेशा जो है या केरा अंदर गिर रहा है हलक में दिमाग से उतर रहा है, ये चीज भी उसके लिए सर का दर्द जो है उसकी वजह से भी हो सकता है।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: ठीक है। अब वो सिर्फ कहां से पता चलेगा, वो सिर्फ मुआलिज ही बता सकता है उसको, उसकी तशखीस करके। अपने तौर पे तो उसने गोली खानी है कि यार मैं टैबलेट लूं और वो इस्तेमाल करूं और उसके तौर पे मैं अपना काम चाले करूं।
0: बिल्कुल ऐसी बात।
1: फिर बाज दफा हम लोग पानी में कंजूसी कर जाते हैं कि यार थोड़ा पिया, और बाज दफा बहुत ज्यादा ठंडा पिया,
0: ऐसी बात
1: पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, पानी ठंडा निकालिए, फ्रिज से निकाले अभी भी, ये चीज भी नुकसान देती है, सर के दर्द को बढ़ाती है और पानी की कमी जो है ये भी उसको मसले को बढ़ा देती है। तो इस वजह से फिर कमजोरी आएगी।
0: हाँ जी।
1: चक्कर भी इसी वजह से ही बाज लोगों को आते हैं कि मुझे चक्कर आते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही तशखीस हो सकती है कि सर दर्द किस वजह से है,
0: किस वजह से हो रहा है
1: और उसका इलाज क्या है।
0: ऐसी बात।
1: फिर हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम, बस चंद लोग हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, उन्होंने शेड्यूल रखा है, लेकिन अक्सरियत जो है वो शायद वर्जिश से वाकफ ही नहीं है। वो वैसे बस कहते हैं यार हम चलते हैं मीलों, या हम बहुत ज्यादा सख्त काम करते हैं, तो उसी को वर्जिश से तशबीह दे देते हैं कि यार यही हमारी वर्जिश है।
0: ऐसी बात।
1: लेकिन अपने जिस्म को एक प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मूव करना या उसको वार्म अप करना कि वो गर्म हो, तो उसमें फिर पट्ठों में लचक आती है, उसके खून का जो दुरानिया है वो भी ठीक रहता है, तो फिर सर के दर्द का सवाल पैदा नहीं होता।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: फिर बाज दफा होता है कि कुछ लोग खाना ही नहीं खाते हैं टाइम से, काम में मसरूफ है, अच्छा ठीक है रखें जी ठहर के खाएंगे, या अब टाइम ज्यादा हो गया है शाम में देख लेंगे,
0: ठीक है
1: फिलहाल चाय पी ली बिस्किट खा लिए, ये चीज भी जब आप खाना छोड़ते हैं इसकी वजह से भी सर दर्द हो।
0: अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि अक्सर ये आदत भी आजकल नौजवानों में पाई जाती है कि सोने से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले खाना खा के फिर सो गए रात को।
1: ये भी गलत है,
0: ये भी गलत तरीका है ना?
1: बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैदे का काम है कि आपने जो करा है उसने साथ साथ उसका काम जारी है,
0: ऐसी बात
1: वो उसको हजम कर रहा है।

0: तो वो जितना आप जल्दी खाते हैं और आप उतनी देर में अपने घर में मसरूफ रहते हैं कामों में, तो उससे खाना मैदे को हजम करना आसान हो जाता
1: ऐसी बात है।
0: और दूसरी बात है कि वो लाइट किस्म का होता है, कोई इतना ज्यादा हैवी नहीं होता। फिर आजकल ये वाकई फैशन सा बन गया कि ठीक है यार बेड के ऊपर ही खाना है
1: बात
0: और शॉर्ट से टाइम में फिर लेट
1: जाने ऐसे दोपहर को भी यही होता है और रात को तो अक्सर यही माना चलता रहता है।
0: चले किसी हद तक है कि वो बाज में लिखा है कि आप कलोला करें जैसे थोड़ा सा आराम कर लें वो बेहतर है, लेकिन खासकर क्योंकि दिन में आपने थोड़ा आराम भी कर लिया उसके बाद आपने अपने मामला भी करने हैं,
1: ऐसी बात चलना चलना ऐसी बात
0: वो हजम हो जाता है, लेकिन रात में ऐसा नहीं है। और खसूसन जैसे अब मौसम सर्द आ रहा है तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें रातें तकरीबन बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो आदमी कोशिश करता है कि यार बस ठंड है तो मैं जरा जल्दी से बस खाऊं और अपने बिस्तर में पहुंचूं। ये चीज नुकसानदेह है, उसको टाइम दें। फिर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चाय का, कॉफी का इनका इस्तेमाल ना हो, एक महदूद मुनासिब मिकदार में हो जाए तो वो
1: ऐसी बात है,
0: फिर भी ठीक है चल जाता है। लेकिन अगर आप मुसलसल चाय पे हैं कि जरा सा थकावट हुई चाय ले ली, गोली खा ली चाय ले ली, या सुबह दोपहर शाम वो एक चाय तसलसल से चल रही है, तो वो चीज फिर नुकसान दे सकती है और उसकी सर दर्द की वजह भी बन सकती है। और उस वजह से फिर आप हालांकि चाय सर के दर्द को दूर करने के लिए आप चाय पीते हैं,
1: ऐसी बात
0: है, तौर पर वो सुकून देती है, लेकिन वो एक जब मुसलसल आदत बनेगी तो फिर आपका सर दर्द जो है वो चाय से भी नहीं जाएगा,
1: जाहिर सी बात है। ये तो
0: फिर आपको उसके लिए प्रॉपर एक दवाई लेनी पड़ेगी,
1: ऐसी बात है,
0: और तब जाके वो आप उससे छुटकारा पाएंगे।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: फिर नींद जो है वो तो लाजमी है, नींद के बगैर अगर आप कहें वैसे है कि 7-8 घंटे आप प्रॉपर नींद लें,
1: ठीक है,
0: लेकिन कुछ काम की नोयत ऐसी होती है कि लोग कुछ 2 घंटे, कुछ 4 घंटे, कोई 1 घंटा, लेकिन जितनी भी नींद है प्रॉपर तरीके से नींद हो। नींद में ये ना हो कि यार बस मैं उठाऊं जैसे सोया हूं 10-15 मिनट के बाद मैं उठ गया हूं, उसको प्रॉपर कुछ टाइम दें, प्रॉपर नींद करें,
1: ऐसी बात है।
0: फिर आप जो है उसका आप सर के दर्द को नहीं अपने पे सवार करेंगे और ना ही कभी ऐसा होगा कि आपका सर में दर्द हो रहा है। कोशिश करें कि आप अपने टाइम पे सोएं,
1: बिल्कुल,
0: और जो है ज्यादा देर तक किताब है, मोबाइल्स है या कंप्यूटर्स है, इनको ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें,
1: ऐसी बात है।
0: अपने दिमाग को सुकून दें, अपनी निगाहों को सुकून दें, आराम दें, तो फिर सिर का दर्द का सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: ऐसी बात है कि सब वैसे आजकल किताबें तो कहीं दूर ही रह गई हमसे, आजकल मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बस यही चीजें आजकल, तो हम एक दूसरे से भी बात नहीं करते,
0: ऐसा ही है।
1: अब आजकल देखें आप किसी महफिल में कि जहां पर 10 बंदे बैठे हो, पहले आप हमसे बड़े हैं हकीम साहब, तो आप खुद ही बताएं कि आपके यानी कि पहले जमाने में जब 10-15 लोग आपस में बैठते थे तो बातें क्या करते थे, आजकल जब 10-15 बंदे भी बैठे होते हैं ना अपने अपने मोबाइल में बिजी होते
0: हैं। वजह यही है कि आप बहुत दूर हो गए ना, हम उससे फितरत से दूर होते जा रहे हैं,
1: ऐसी बात है।
0: अब आर्टिफिशियल जिंदगी में कदम रख चुके हैं और उसी वजह से हम ज्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। अगर वही हम फितरत के ज्यादा करीब हों तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस्म इतनी जल्दी खराब हो जाए। बाकी दबाव है, परेशानी है, स्ट्रेस है, ये एक कॉमन मसला है, इसको आप तकरीबन हर आदमी कह सकते हैं कि वो ज़हनी तौर पे बेचारा परेशान है क्योंकि हालात ऐसे हैं, लेकिन उसको आप अपने पे हावी ना करें, आप सोचें जरूर, उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालें, लेकिन चीज ये है कि आप इतने दबाव भी ना लें कि मुसलसल आप सरदर्द के मरीज बन जाएं,
1: ऐसी बात है,
0: ठीक है ना। उसको आप ले सकते हैं, आप लाइटली लें, उसका हल तलाश करें और उसके बाद उसे जहन से झटकें,
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: वरना जो है फिर वही है कि दवाइयां हैं और आप हैं,
1: ऐसी बात है, आप हैं और दवाइयां हैं,
0: बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि आप दवाइयों के गिर्द ना घूमें और दवाइयों से जहां तक हो सके आप दूर रहें, और उसी में एक फिटनेस का राज भी छुपा हुआ है कि आप देर तक अपने वजूद को कायम भी रख सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। बाकी कुछ लोगों का जिस तरह पहले बात हुई है ये गर्दन के पट्टे जो हैं ये अकड़ जाते
1: हाँ
0: हैं, ठीक है, तनाव वगैरह आता है तो कंधों में आ जाता है, ये भी बार दफा सिर का दर्द बाइस बन जाता
1: अच्छा।
0: है इससे भी, क्योंकि सारे पट्टे अपना काम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी सिर का दर्द हो सकता है। उसकी वजह कि मुसलसल आप एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हो, आप अपनी पोजीशन ही तब्दील नहीं कर रहे, तो जब आपके असाब सुन हो रहे हैं या अकड़ रहे हैं या तो वो फिर आपके दिमाग की तरफ भी जो है उसका असर जाएगा और आप सर दर्द महसूस करोगे।
1: ये तो होगा,
0: बाज दवा ये होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आप को नीचे की तरफ झुका लेते हैं,
1: ठीक है,
0: कि देख रहे हैं तो वो नीचे की तरफ गर्दन की झुकी पड़ी है, ये चीजें जो हैं ये आपके सर दर्द का बाइस बन सकती हैं,
1: ठीक है,
0: क्योंकि इन्होंने आपके पट्ठों में खिंचाव पैदा करना है, ब्लड के सर्कुलेशन में फर्क आएगा और फिर आप दर्द महसूस करोगे। उससे बेहतर है कि आप अपनी पोजीशन भी बदलें, बेशक आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल में हर आदमी अपने फेल का जिम्मेदार है, आप इस्तेमाल करें लेकिन साथ साथ आप अपनी पोजीशन को भी बदलें, एक पोजीशन में ना रहें,
1: ऐसी बात है,
0: थोड़ा रिलैक्स करें और उसके बाद आप फिर दोबारा शुरू कर लें।
1: हाँ जी,
0: ठीक है, और फिर कोशिश करें कि जब भी आपको सिर में कोई दर्द या कोई ऐसी चीज महसूस होती है तो आप अपने तौर पे फौरी तौर पे मेडिसिन लेने की ना करें। हाँ जी, पहले तो थोड़ा सा तहम्मुल करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अगर उससे आपको बेहतरी आती है तो फिर तो बहुत बेहतर है,
1: ऐसी बात है,
0: और नहीं फौरी तौर पे कोई टैबलेट ना लें तो कि मैं वक्ती तौर पे तो तैयार हूं ना, मैं अपना काम मुकम्मल करूं बाद में देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप कोई वक्त निकाल के मुआलिज से मिलें और उसे प्रॉपर बात करें,
1: ऐसी बात
0: ये
1: है।
0: मेरे साथ हो रहा है और ये वजह है, ताकि वो आपको बता सके कि क्या वजह है। बाद दफा हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनको भी सर दर्द की शिकायत होती है,
1: उनको तो ज्यादा होती है कैंसर।
0: अब चीज ये है कि वो जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा मुझे ब्लड प्रेशर है,
1: बिल्कुल ऐसी बात
0: इस वजह से है या सर का दर्द वैसे हो रहा है, ये चीजें सारी बाद में उससे मशवरा करने से फिर सामने आ जाती हैं, अपनी तरफ से नहीं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं समझूं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया मैं जल्दी से गोली खा लूं, तो ऐसा नहीं है, पहले आप तशखीस करें उसके बाद। अब कहते हैं कि सर का दर्द खतरनाक भी हो सकता है,
1: सी बात है। अच्छा हकीम साहब, हमने ये सुना है कि सर के दर्द की वजह से सर की रग भी फट सकती है।
0: हाँ, वो अगर बहुत ज्यादा दबाव आप लेते हैं, बाज रगें जो हैं, बाज वेन्स जो हैं, वो बिल्कुल नाजुक हैं, कमजोर हैं, और उस वजह से फिर वो नस जो है जिसे कहते हैं नस फटना या डैमेज होना, तो वो खून जाहिर बात है।
1: यानी कि हकीम साहब, जो बंदे जिन बंदों का मुसलसल ये मसला है सर के दर्द की वजह से, वो इलाज नहीं करा रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं,
0: वो देखा जाए तो फिर अपने साथ ज्यादती भी कर रहे हैं ना,
1: ऐसी बात है।
0: तो उसमें यह है कि जब तक आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे, वक्ती तौर पे आप गोलियां खा खा के उसको दबाते जाएंगे तो उसका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। उम्र का एक हिस्सा होता है जिसमें आदमी सब कुछ बर्दाश्त करता है, और बाज दफा उम्र के इस हिस्से में होते हैं जहां थोड़ा सी भी चीज बर्दाश्त नहीं हो पाती,
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: हमारा जिस्म सदा ताकतवर तंदुरुस्त नहीं रहता, ये कमजोर भी पड़ना है, हमारे अज़ा जो है दिल दिमाग गुर्दे मैदा दांत हर चीज हमारी कमजोर पड़नी है, और एक टाइम पे फिर वो आके फना भी होना,
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: तो हमें उस वजह से अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा कि हम उसको उस तरह लेके चले ना।
1: हाँ जी,
0: अब के अगर सिर दर्द है और अचानक ही शदीद शुरू हो जाता है,
1: ऐसी बात है,
0: तो फिर आपको फौरी तौर पे मिलना पड़ता है मुआलिज से, उसके लिए आप फौरी तौर पे गोली ना लें,
1: बिल्कुल ऐसी
0: बात। पहले आप पता करें कि मुझे क्या वजहात हो सकती है, क्या है, और इसके बाद के बाद दफा चोट लग जाती है।
1: हाँ जी, बिल्कुल
0: गिर जाते हैं, कोई अल्लाह ना करे कि रोड पे कोई ऐसा वाकया हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है अगर दर्द शुरू हो रही है तो फौरी तौर पे आपको मिलना पड़ेगा, आपको मशवरा करना पड़ेगा।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि मेरे साथ ये हुआ, बाद का बेहोशी हो जाती है या कोई शदीद गनूदगी आ रही होती है, उस पे भी बोलने में अगर आपको मुश्किल आ रही है तब भी फिल फौर गोली का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप फौरी तौर पे मुआलिज से मशवरा करें, ताकि असल हकीकत नजर आए। फिर अचानक आपकी नजर में तब्दीली आ जाती है, नजर आपकी एकदम कमजोर हो रही है, उसको भी आप लाइटली ना लें। बाजू का तेज बुखार अचानक हो जाता है और आपकी गर्दन अकड़ रही है, उसमें भी आप सर दर्द को ना देखें बल्कि आप फौरी तौर पे अपने मुआलिज से मशवरा करें कि मुझे साथ बुखार भी है, मेरा जिस्म भी, मेरी गर्दन अकड़ रही है, वो फौरी तौर पे तशखीस करके आपको उसके मुताबिक फिर आपको दवाई देगा।
1: ठीक है,
0: उसके साथ साथ जो है ये चीज खत्म हो जाएगी। और बार बार जैसे उल्टियां या वॉमिटिंग आ रही है,
1: हाँ जी,
0: उस पर भी जो है आपको थोड़ा सा फौरन मशवरा करना पड़ेगा। तो चीज ये है कि आप जब तक प्रॉपरली अपने मुआलिज से मशवरा नहीं करेंगे,
1: जाहिर सी बात है,
0: आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि ये कौन सा सर का दर्द है। आपकी तो नजर में वो सर का दर्द ही
1: ऐसी बात है, आप पूरी जिंदगी वो जो है ना आप रेगुलर दवाइयां लेते रहेंगे
0: फिर आप, यही है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि हम लोग गोलियां पास रखते हैं कि यार फौरी तौर पे अगर हुई तो हम एक गोली निकालेंगे, पानी से लेंगे,
1: ऐसी बात।
0: और ऐसे ही एड टीवी पे चल रहे होते हैं कि ठीक है ये दो गोलियां पैरास्टामोल की आप खा लें पानी के साथ,
1: ऐसी बात है
0: आपका फौरी तौर पे। लेकिन वो साथ ये भी होता है कि आप मुआलिज से मशवरा जरूर करें,
1: बिल्कुल ऐसी बात,
0: अपने तौर पे इस्तेमाल ना करें। लेकिन इस पे थोड़ा सा मेरी भी लिसनर से यही दरख्वास्त है कि अगर ऐसा कोई मसला होता भी है तो आप पहले मुआलिज से मशवरा जरूर करें।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: अपने तौर पे टोटके नुस्खे वक्ती दवाइयां कोशिश करें कि इनसे थोड़ा सा दूर रहें, मशवरा करके मुआलिज से उसकी हदायत के मुताबिक चलें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपने मर्ज को काबू में कर सकते।
1: चलें ठीक है हकीम साहब, ये बताइएगा कि क्या सर की जितने भी आपने कहा कि 72 अकसाम में दर्दों की, तो इन जिस किस्म का भी सर का दर्द हो क्या इसका इलाज अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग में मौजूद है?
0: इसका इलाज कुदरती जड़ी बूटियों में बिल्कुल मौजूद है।
1: अच्छा माशाल्लाह।
0: हाँ, जितने हमारे मुस्तनद इदारे हैं, अच्छी है, अजमल है, हमदर्द है, हर इदारा या हर दवाखाना वो इन जड़ी बूटियों से इस्तेफादा हासिल करता है।
1: ठीक है,
0: इनके लिए प्रॉपर मेडिसिन बनी हुई है जो कि एलोपैथिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: हाँ, जहाँ तक कल शिफा दवाखाने की बात आती है तो वो ये है कि जब मरीज आता है तो पहले तो उसकी तशखीस करनी है कि आया इसकी वजूहत क्या है सिर के दर्द की, फिर उस मर्ज के मुताबिक उसकी दवाई उसका इलाज मौजूद है और वो उसे मिलेगा प्रॉपर।
1: चले ठीक है। सो बिल्कुल खवातीनो हजरात, आप बस्ते हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ और सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। सो रोजाना की तरह आज भी आपकी खिदमत में हम बिल्कुल लाइव और बराह रास्त हैं। हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब भी ऑन योर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है और आज हकीम साहब ने बड़ी डीपली और बड़ा ही खुलासे के साथ आपको बताया है सर के दर्द के बारे में। सो जनाब, वो बहने वो भाई जिनको सर दर्द का मसला है या इसके अलावा आपको कोई किस्म का भी मसला है, आपको कोई बीमारी है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं अलशिफा दवाखाना में। इंशाल्लाह हकीम साहब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे कल और मरीजों का चेकअप मुआयना जारी रखेंगे। तो बिल्कुल जी, अभी कॉल के लिए नंबर्स खुले हैं, अगर आपका कोई सेहत के हवाले से सवाल है आप हमारे हकीम साहब से पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, 0319-55-23-404 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। इसके अलावा 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 0963-511-488 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और बिल्कुल जनाब, आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से कोई मशवरा करना चाहते हैं इस लाइव शो में, कोई टोटका पूछना चाहते हैं, कोई नुस्खा पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर कॉल के जरिए, SMS के जरिए और 0963-511-488 पर भी। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो।
1: अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सोकुलकुम जी नवरो। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी जी, कौन और कहाँ से मेरे भाई?
2: चू रखा लो
1: दस साल सुचिका मंदाल सोई दे
2: नौ दस साल
1: उम्र है सही जैसे रेडियो वर वही हकीम साहब तरह दिए बारे के मशवरा को किस वाले जी जी। हकीम साहब भाई कह रहे हैं कि उनका बेटा है 9 साल उम्र है اور رات کو یعنی کہ وہ چارپائی پر چھوٹا پیشاب کر دیتا ہے, تو اس کے بارے میں ان کو بتائیے گا حکیم صاحب.
0: عموماً بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہے, بچے نہیں بعض اوقات بڑے بھی کر دیتے ہیں, اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں. جب ہمارے مثانے میں بعض اوقات گرمی ہوگی اس کی وجوہات کی وجہ سے, مثانے کمزوری کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ ذہنی تھوڑی ذہن پہ کچھ ایسی چیزیں سوار ہو جاتی ہیں کہ آدمی تصور یا شعور میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید کسی جگہ پہ کر رہا ہوں, لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں غلط اس پہ ہوں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے, ویسے جو میں نے کافی دفعہ اس کو آزمایا بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے, کالے تیل استعمال کر سکتے ہیں گڑ کے ساتھ ملا کے, ویسے نہیں دینے. آپ کالے تیل اور گڑ کو ملا کے اس کے ذریعے آپ لڈو بنا لیں گولیاں ٹائپ کی ذرا موٹی, اور وہ ایک روز کی بچے کو استعمال کرائیں تو اس سے اس کے پیشاب میں کافی حد تک کمی آ جائے گی.
1: کالا تل اور گڑ,
0: تل اور گڑ دونوں کو ملا کے آپ ان کو کوٹیں, اور کوٹنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے لڈو ٹائپ بنا
1: لیں جس طرح جامن ہوتے ہیں,
0: وہ بنا کے ایک روز کی بچہ استعمال کرے. ایک تو وہ کھا بھی آسانی سے سکتا ہے, اور اس سے اس کے مثانے میں تھوڑی طاقت آئے تاکہ اس کا پیشاب کنٹرول ہو سکے, اور اگر پھر بھی اس سے فرق نہیں پڑتا
1: تو دواخانہ,
0: پھر بچے کو دواخانے پہ.
1: بالکل ایسی بات ہے جی. الشفا دواخانہ ہے, شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں, اور انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 سے لے کر شام 4 تک موجود ہوں گے. السلام علیکم.
2: سیدا
1: سی چکم گلی ہیلو جی آواز ہم کٹ سولو جی. حکیم صاحب ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں گھٹنے کے درد کے لیے ایک گولی استعمال کر رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے
1: نام انہوں نے لیا ہے سو میڈیسن کا نام تو نہیں لینا چاہیے, چاہے جس کمپنی کی بھی میڈیسن وہ لے رہے ہیں وہ ڈیلی لے رہے ہیں ایسی بات. اور کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جو منہ ہے وہ سوجا ہوا ہے.
0: صحیح
1: کہتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ میڈیسن لیا میرے گھٹنوں کو درد تو ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا منہ سوجا ہوا ہے. تو حکیم صاحب یہ اسٹریٹ لائٹس کی وجہ ہو سکتی ہے؟
0: بالکل ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں, بعض دفعہ دوائی بھی بے ضرر ہوتی ہے, لیکن مریض جو ہے اس نے بے شمار قسم کی دوائیاں استعمال کی ہوتی
1: ہیں, یہ بھی ہوتا ہے,
0: ان دوائیوں کے ریئیکشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ پڑ رہی ہے تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے طور پہ اس دوائی کو لے رہے ہیں,
1: جیسے ہوتا ہے
0: مارکیٹ میں یا اشتہارات میں دیکھا اور جا کے گولی مانگ لی ڈبی دکھا کے اور اسے استعمال کرنا شروع کر دیا, تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ معالج سے کسی سے مشورہ کریں,
1: ٹھیک ہے,
0: اور اپنی اسے ظاہری طور پہ جو آپ کی علامتیں ہیں جو آپ کی باڈی ہے اس کو دکھائیں اور پھر اس سے مشورہ لیں, تب وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے, اور اگر اسے آپ زیادہ دیر تک استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات یہ سامنے آ سکتے ہیں.
1: چلے ٹھیک ہے سر. بالکل جناب چکم ورور کال کڑے وہ ورورا پتر خدا دا چک ساسو چکم دا دردونه دی دے مطلب چے مکمل علاج دا پار ساسو تشریف راوڑی الشفا دواخانه تا. الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے انشاءاللہ حکیم سے بسبا 8 بجے نوالا سبا عمل مقام سلور بجے پوری بو موجود بھی او مریضان چکا پوائنٹ بازاری ساتھی. السلام علیکم. روشن بھائی تو میسج میں پڑھ گیا ہچکی آدھی ہے تو بالکل اس بارے حکیم صاحب کو پتا کرنے ابھی جی تو میسج ہے جی اس تو ایسا آن ایئر گال نہ کر سکتے. ٹھیک ہے جی خوشید امراض ہاں بالکل ہی میں گالے تاری بہت مہربانی ہے جی. تو بہتر یہ ہو سی یہ بھی ایک مسئلہ ہے پیا جہاں تا مسئلہ ہے پیا جہاں تصا میسج لکھا ہے بہتر یہ ہے جو تصا انہوں کو گھن کے دواخانہ تشریف گنانا ایک دفعہ
2: بالکل
1: ریڈیو سن رہے ہو جی حکیم صاحب پولیس کے بارے مشورہ گننے ہیں جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے ہچکی آتی ہے ایک ہفتے سے مسلسل
0: دیکھیں ہچکی کوئی مرض نہیں ہے
1: ایسی بات
0: لیکن مختلف بعض دفعہ علامت ہے کی
1: تو اچھا یہ بھی کی علامت ہے
0: لیکن یہ رک جاتی ہے بعض دفعہ اور بعض دفعہ اچانک آ جاتی ہے اب اس میں کئی لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ہچکی آ رہی ہے آپ اچانک بولیں
1: ایسی بات ہے
0: تو بعض دفعہ ہچکی رک جاتی ہے کچھ لوگ تھوڑے سے چینی کے دانے ڈال لیتے ہیں منہ میں چیز یہ ہے کہ اب اگر ہچکی جس آدمی کو ہے تو کوشش اگر دواخانے پہ آ جاتے ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ اس سے دیکھیں کہ اس کے معدے میں کوئی مسئلہ کوئی تیزابیت یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے تو اس کا ایک پراپر حل ہے کہ ہچکی ان کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے
1: اچھا حکیم صاحب بچپن میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا تھا ہمیں بھی مجھے یاد ہے ہچکی تو جب ہم پانی پی لیتے تو پھر ٹھیک ہو جاتے تھے
0: بعض صورتوں میں ہے یہ ٹوٹکے ہیں جو صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں پہلے بزرگ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی پی لیں تھوڑی سی چینی کھا لیں یا
1: ایسی بات ہے
0: اس سے ہچکی رک جاتی ہے اور بعض اسے اس چیز سے کمپیئر کرتے تھے کہ یار ہچکی آ رہی ہے شاید تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے
1: ہاں یہ بھی بڑی بات
0: ہے یہ ہے کہ وہ ایک بس کہنے کے باڈی میں تبدیلی ہے اس کی وجہ سے
1: ایسی بات ہے سو حکیم صاحب اچھا معدے کے جو مسائل ہیں یعنی کہ معدے کی جلن ہے تیزابیت ہے اس کی وجہ سے بھی ہچکی آ سکتی ہے
0: آ سکتی ہے بالکل معدے میں اگر آپ کی خشکی ہوگی آپ کی تیزابیت ہوگی بعض دفعہ اس وجہ سے بھی ہچکی آ جاتی ہے مسلسل آتی ہے
1: ٹھیک ہے سو بالکل جناب اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بالکل تشریف لا سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی السلام علیکم السلام علیکم کی حال جی کون دے کتوں گال کریں دے پہ
2: یہ تجربات کی بات ہے ایک دفعہ وہ حکیم صاحب سے کہہ دینا کہ وہ جو ایک انسان کے کانوں پہ جو آوازیں آ رہی ہے کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے
1: دیکھیں جی انسان کے کانوں میں آوازیں کس طرح کی آنا یہ بتائیے ذرا
2: اس طرح کی ہوا نہیں چلتا
1: اچھا ہوا نہیں چلتا ٹھیک ہے جی آپ یہ بتائیے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ چلیں ٹھیک ہے آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں جی حکیم صاحب سے اس کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں جی حکیم صاحب کان میں مسلسل ہوا کی آوازیں آنا کس بیماری کی علامت ہو سکتی ہے
0: دیکھیں بعض دفعہ کان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں جیسے ناک کان گلے کے مسائل آتے ہیں
1: ایسی بات
0: کان کے بعض دفعہ اپنے مسائل ہو سکتے ہیں اس میں ورم ہو سکتا ہے اس میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے
1: ایسی بات
0: اور بعض دفعہ سر کے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے سر جیسے سر درد ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سائیں سائیں کسی آوازیں آتی ہیں
1: بالکل
0: اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پیشنٹ ہے جب اس کی مکمل ایک کیس ہسٹری سامنے آئی تو اس پہ تھوڑا تجویز کرنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے اور آدمی اس سے کچھ تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتا ہے اس سے پوچھتا ہے اور پھر اس کے اس جگہ تک پہنچتا ہے کہ جو اس کا مرکز ہے باقی کئی وجوہات ہیں آوازیں آنے کی لیکن اب یہ ہے کہ مریض سامنے ہو یا مریض اگر تھوڑا سا وقت نکال کے مجھے دواخانے پہ مل لیں تو شاید میں انہیں تفصیل سے بتا سکوں
1: بالکل ایسی بات ہے تو بالکل جناب جب آپ دواخانہ پر آتے ہیں کل بھی میں نے اس بارے میں بات کی اور روزانہ شو میں حکیم صاحب بھی آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں میں بھی آپ کو یہی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ دواخانہ پر آ کر حکیم صاحب سے علاج کرا لیتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر تو ہم بیٹھے ہیں بالکل آپ کو مشورہ دیں گے لیکن اگر آپ سیریس ہیں اپنی صحت کو لے کر تو اس کے لیے آپ کو الشفا دواخانہ میں ایک مرتبہ ضرور آنا پڑے گا الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ روزانہ حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک آج بھی موجود تھے اور کل بھی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے الشفا دواخانہ شبال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں سو مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کرنے کے لیے نمبرز جو ہیں اپنے پاس نوٹ فرمائیں اگر کسی میری بہن کا کسی میرے بھائی کا صحت کے حوالے سے کوئی سوال رہ گیا ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 0963 511488 पर 09563511488 पर आप कॉल कर सकते हैं. तो बिल्कुल ख्वातीनों हजरात सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर और ये शो आपकी खिदमत में अलशिफा दवाखाने के खसूसी तआवुन से पेश किया जाता है जिसमें हम बात किया करते हैं आपकी सेहत की. आपकी सेहत के बारे में आपको कीमती मशवरे देते हैं. आप कीमती

वाह वाह सी, क्या बात है ऐसी, क्या बात है ऐसी। जमाद स्टूडियो पर गणेश वाय है टाइम दीजिए, मोदी स्टूडियो पर गणेश टाइम दीजिए ना आप बजी वो मेट थी पसंद जे मोदी स्टूडियो पर गणेश दा टाइम दीजिए पता नहीं तू सिर्फ गणेश बस टाइम पल्ले पल्ले गणेश कह खास गलती।

अच्छा मत अच्छे नोटेंशन प्रोडक्ट्स अच्छा मत अच्छा नोटेंशन प्रोडक्ट गिफ्ट करी दी अवर एडे रे शुक्रिया अदको ये द टकोर थड़ाले अच्छा मत पसरो सरो मंजूर दी के द जनान दलास हाउ री रीना हो रे हन ओके सी और बोलो भाई सलामुना वेलकम आई एम شمایلا جناب ډیره مننه خوشاله اوسه ښه

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनी

0: जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है किस नज़्म पाकिस्तान की, ये आवाज है हुस्न और खूबसूरती की, ये आवाज है तंदुरुस्ती की, ये आवाज है शिफा की।
1: वो इश्क ने हटा डाला हर एक जर्र।
0: जनाब मुझे कहते हैं खलील ताबे शमान और सुपैर की चार बज चुके हैं, सलाम कबूल कीजिएगा जनाब। सोमवार का दिन है, 8 रबी उसानी है, 21 सितंबर और 6 अस्तु। जनाब एक नए दिन के साथ, एक नई तारीख के साथ जनाब आप लोगों के साथ मौजूद हैं आज भी, क्योंकि जनाब सुपैर की चार बज चुके हैं और चार बजते ही आपको अपने शहर के एफएम यानी कि डेरा में मौजूद हैं तो ग्लोबल एफएम 91, पहाड़पुर में मौजूद हैं तो 97.4 पैगाम रेडियो, और अगर टांग में मौजूद हैं तो रेडियो अमन 88.4 से आप मेरा प्रोग्राम केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम सुन रहे होंगे, केसन टी टाइम शो। जनाब चाय के कप के साथ, और बिल्कुल मेरे पास भी अभी की अभी चाय का कप पहुंचा है, और ये भी बहुत गर्म है, तो मैं बहुत गर्म चाय बिल्कुल भी नहीं पीता होता हूँ। जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यानी कि ना ही जुबान जले ना ही होंठ जले, और आराम से थोड़े से टेम्परेचर के साथ हल्की गर्म चाय का मजा जी जनाब बिल्कुल जी और होता है। तो जनाब उम्मीद यही करता हूँ कि मेरी तरह आप भी बहुत सारे लोग इस वक्त में चाय के चुस्की के साथ, चाय के मजे के साथ, चाय की लज्जत के साथ, जायके के साथ जनाब हमारे प्रोग्राम को सुनेंगे और ढेर सारा महजूज होंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, और हम जो प्रोग्राम तरतीब देते हैं वो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होता है प्रोग्राम, कि जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम आपको स्किन के प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताएं, आपको स्किन के प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ कि आखिर आपको स्किन का ये मसला क्यों पेश आया है, और साथ साथ में ये भी आपको बताते हैं कि जनाब इसका तदारुक, इसका इलाज जो है वो किस चीज में है। बातें करेंगे, लेकिन कहते हैं जनाब कि अल्लाह ताला को, जैसे हमें अल्लाह ताला से बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, हर बंदा अल्लाह ताला से दुआ इसलिए करता है, कि उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने रब से, और वो उसे उस तरीके से मांगने की कोशिश करता है, कोई सजदों में जाता है, कोई दुआ में मांगता है, कोई हाथ उल्टे करके दुआ मांगता है, कोई खड़े करके मांगता है, कोई रो के मांगता है, कोई दिल ही दिल में मांगता है जनाब। तो बात क्या है कि हमें अल्लाह ताला से बहुत कुछ चाहिए, और हम अल्लाह ताला से मांगते भी हैं और हमें मिल भी जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके रब को भी आपसे कुछ चाहिए? आपका जो रब है, हम सबका जो रब है, उसको भी हमसे एक चीज चाहिए, और वो क्या है पता है आपको? वो है यकीन, तवक्कल। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे ऊपर ऐसा गुमान रखे कि उसे लगे कि कुछ नामुमकिन है तो मेरा रब मुमकिन कर देगा। अक्सर हम अल्लाह ताला से वो चीजें मांगते हैं जो मुमकिन होती हैं। यकीन जानिए, हम अपने रब से अपनी सोच के मुताबिक वो चीज मांगते हैं जो हमारा जहन कहता है कि ये मुमकिन है, लेकिन खुदा की जो जात है ना, वो इससे बहुत ऊपर है। वो काम करके देने वाली जात है कि जो नामुमकिन हो। आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा याद है? कहते हैं यकीन कीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं था कि आगे दरियाए कौन सा फिरात था, कौन सा दरिया था, दरिया बुहरा अहमर उसे कहते हैं, बहुत बड़ा समंदर था। मूसा अलैहिस्सलाम को कोई दिल के अंदर गुमान नहीं था कि अल्लाह ताला जो है आज समंदर को, दरिया को चीर देंगे और उस दरिया में मेरे लिए रास्ता बना देंगे। ये बिल्कुल भी उनके माइंड में नहीं था, लेकिन एक उनके जहन के अंदर गुमान था कि मेरा रब मुझे तनहा नहीं छोड़ेगा। सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिमाग के अंदर एक चीज थी कि मेरा रब मुझे तनहा नहीं छोड़ेगा। अब ये उसके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि वो मुझे कैसा मेरा साथ देता है, कैसी वो मेरी मदद करता है, लेकिन उनका यकीन इतना बढ़िया था कि अल्लाह ताला ने उनके यकीन के मुताबिक वो काम कर दिखाया जो दुनिया में कभी हुआ नहीं था, कभी सुना, कभी किताबों में देखा, किसी नबी के दौर में कभी ऐसा कुछ हुआ कि समंदर को या फिर दरिया को चीर कर रास्ता बनाया गया हो, नहीं था। लेकिन जब अल्लाह ताला के ऊपर यकीन ऐसा हो कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, तो यकीन कीजिए ऐसे ही करिश्मे होते हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, मूसा का रब और हमारा रब एक ही रब है। फर्क किस चीज में है? यकीन की कमी के अंदर। वो यकीन से भरपूर थे कि हमारा रब हमेशा हमारे साथ है, और हमारे ऊपर जब परेशानी आती है तो क्या होता है, बहुत सारे दुनिया के रास्ते हम इख्तियार करते हैं और एंड के ऊपर जाकर जो है हम सजदों में गिरते हैं। तो अपनी तरतीब थोड़ी सी सेट करने की जरूरत है, भरपूर यकीन के साथ कि जो आपका रब अपने बंदे से चाहता है कि मेरा बंदा मेरे ऊपर ऐसा यकीन रखे कि मेरा रब नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। मुमकिन को तो इंसान भी मुमकिन बना देते हैं ना जनाब, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली जात को रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं।

पांच प्रॉब्लम का एक सलूशन जो है वो तो जनाब हमारा शैम्पू है, केसन शैम्पू। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों से केसन शिफाय दर्द आयल से, जो कि एक मैजिक या फिर जादू से कम नहीं है।

0: जी जनाब, बेहतर सर्कुलेशन हम आपको वजह बताते हैं भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी कंपनी है और आप लोगों को कैसे बातें बताते हैं जो आपको पहले से पता नहीं होती है। जिस्म के अंदर जो दर्द होते हैं उनकी वजहात मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अकड़न, जो पट्टे अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं, ठीक है जनाब, तब आपके जिस्म में दर्द होगा। अब ये जब तेल आप लगाएंगे और मालिश करेंगे तो उसी पट्टे को आपने महसूस करना है। वो जो पट्टा शदीद किस्म का आपको दर्द कर रहा था, शिफाए दर्द आयल शुतुरमुर्ग का तेल लगाने के बाद यकदम से वो पट्टे वाली जगह जहां पर आपने तेल लगाया होगा ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा, नर्म मुलायम हो जाएगा। पट्टों की जो उजलात हैं, जो मसल्स हैं, उनकी जो अकड़न होती है, जो खिंचाव होता है, उसको बिल्कुल ये नरम कर देता है। आपके पट्टे नरम पड़ जाते हैं और आपका जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी वजह होती है, आपके जिस्म के अंदर खून की रवानी मुतासर होती है। बाज़ुकात बहुत सारे लोगों को जो टांगों का दर्द होता है उसके अंदर बड़ा मसला यही होता है कि जो रगों के अंदर खून चल रहा होता है वो मुतासर होता है। उसकी सर्कुलेशन जो होती है, ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि खून का आपको पता है एक निजाम है ना, दिल से खून निकलता है और दिल को ही वापस आता है। ये पंप के थ्रू आपका जो दिल होता है वो पंपिंग करता है। ये जो धड़क रहा होता है, ये जैसे आवाज आ रही होती धड़क धड़क, ये बेसिकली पंप हो रहा होता है और इसी हवा भरती है इससे ना। ये बिल्कुल वो फिनोमेना जिस तरह लोग साइकिलों की हवा भरते हैं, ऊपर से पंप चलाते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपके जिस्म के अंदर है कि आपका दिल ऐसे सुकड़ता है, फिर ऐसे फूलता है, फिर सुकड़ता है, फिर ऐसे फूलता है। क्या होता है, खून जो होता है वो आपके जिस्म को जाता है फिर वापस आपके दिल को आता है। तो बाज़ुकात क्या होता है, जिस्म में खून की रवानी मुतासिर होती है। खून गाढ़ा होने की वजह से, क्लॉट्स बनने की वजह से, गुटलियां बनने की वजह से वो नहीं चल पा रहा होता, जिसकी वजह से आपको दर्द हो जाता है। स्पेशल टांगों का जो कोई केस होता है जिसमें खवातीन और मर्द टांगे अपने बेड के ऊपर मार रहे होते हैं, बेचैनी होती है, वो यही वजह होती है कि उनके टांगों में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन जो खून है उसकी रवानी मुतासर है।
1: बिना कोई साइड इफेक्ट ये है।
0: तो ये तेल जो है, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो तेल है, ये अफादियत है इसकी, इसके अंदर कैप्सिकम ऑयल को शामिल किया गया है जो ये काम करता है कि शुतुरमुर्ग के तेल के साथ ही ये ऐड है, ठीक है जनाब, जो कि जिस्म के अंदर खून की जो गर्दिश है, जो खून की रवानी है, उसको फास्ट करता है या फिर उसको रवा करता है, रुके खून को, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर दर्द हो जाते हैं। वो मैं आपसे उस दिन बता रहा था कि फीमेल हमारे पास आई थी, हादिया की अम्मी, हादिया की अम्मी सुन रही हैं क्या हमें?

0: दर्द भूल जा।
1: जी जनाब, आखिरी घूंट के साथ मेरी चाय खत्म। हर अब सारी बातें आपकी सुनेंगे और आपको सुनाएंगे। पहले भी सुना रहा था लेकिन वक्फे से, क्योंकि मेरी चाय खत्म नहीं होती। टी टाइम मैंने जनाब, चाय तो जरूरी है।
0: ये
1: तो हादिया की अम्मी सुन रही होंगी भाई, बहुत ज्यादा हमसे ये लोग जो है केसन शिफा दर्द लेके गए हैं। तो जनाब, इनसे एक दिन जब मैंने पूछा कि मैंने क्या, हम आपका इंटरव्यू लेते हैं, हमें बताएं आप जो इतना हमसे शिफा दर्द लेके जाते हैं, कहते हैं मैंने मुल्तान भेजा है, मैंने पिंडी भेजा है, मैंने पड़ोसन को दिलवाया, मैंने इसको दिलाया, मैंने उसको दिलाया। तो मैंने कहा कौन कौन से मसलों के लिए आप ये तेल लेके गई है, इतनी ज्यादा आप लेके गई है और मरीज भी ठीक हो गए। तो उसने कहा भाई मैं आपको क्या बताऊं, जिस्म के अंदर कहीं भी दर्द हो इसको लगाओ, है जी इसको लगाओ तो बस दर्द खत्म हो जाता है, कहीं उड़ जाता है। तो भाई जो टैबलेट होती है ना, टैबलेट जब आप दर्द वाली गोली खाते हैं, वो आपको 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट के बाद वो आपका दर्द खत्म करती है। कभी नोट कीजिएगा, आप बुखार के लिए कोई टैबलेट खाएं, आप किसी भी शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, किसी भी किस्म के मरीज हैं, जब आप टैबलेट खाते हैं तो 20 से 30 मिनट का टाइम होता है कि वो आपके जिस्म के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, ये टाइम होता है। ठीक है जनाब, कुछ नफसियाती मसाइल होते हैं कि जैसे आप दर्द की गोली लेते हैं तो आप अपने दिमाग को कहते हैं कि मैंने दर्द की गोली खा ली है, तो बस वो आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। हालांकि गोली जो काम करती है वो 25 मिनट के बाद आपके बॉडी के अंदर काम शुरू करती है, 25 मिनट के बाद वो अपना एक्टिवली काम करती है और आपको जो भी मर्ज होता है, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, उसको वो नॉर्मल करना शुरू कर देती है। तो लेकिन केसन शिफाय दर्द 5 मिनट के अंदर आपका शदीद से शदीद दर्द खत्म करेगा।
0: कमर का हर जख्म तो भूल जा, बेहतर सर्कुलेशन, हर पल बेहतर हाल, बिना कोई साइड इफेक्ट, ये है बेदर्द।
1: जनाब बगैर साइड इफेक्ट के ये है बाकमाल।
0: दर्द से आजादी का ये है नया रास्ता,
1: दर्द से आजादी का नया है ये रास्ता,
0: बेहतर सर्कुलेशन, हर पल बेहतर हाल, केसन शिफाए दर्द।
1: जी जनाब, केसन शिफाए दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं जनाब, और आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब। आज तीनों स्टेशन पर मेरी आवाज जा रही है, डेरा में ग्लोबल एफएम 91.1, डाक में रेडियो अमन, और पहाड़पुर में रेडियो पैगाम। तो देखते हैं कि जनाब सबसे पहले हमें कौन से स्टेशन से कॉल आने लगी है, और कौन है जो हमें आके बताता है कि यार ये वाकई जादू है, ये कोई तेल नहीं है, वाकई ये जितना कीमत में थोड़ा सा महंगा है लेकिन उतना ही ये जबरदस्त काम करता है, और किस तरीके से लोगों को हमारी ये प्रोडक्ट सेहतियाब कर रही है, पुराने से पुराने दर्द खत्म कर रही है।
0: अब होगा दूर, जिस्म में डाले नई जान, भर दे सुरूर।
1: जी जनाब, और हमारा नंबर आप लोगों को एक दफा फिर से बताते चलो, 03446-936-3366। जी जनाब, 03-44-936-3366 के ऊपर हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद है, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, किन हाल है, खैर खैरियत है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोजाना तो सनुमान शेख को सलाम देंदे वे, आज बरह रास्त उन्हों को सलाम दे चो, क्योंकि वो सुन दे बैठे उस दिन अपने एफएम ते, क्योंकि आई पहाड़पुर एफएम ते भी सारी ट्रांसमिशन बहाल है। सही
2: सलाम
1: के सल्यूट करना चाहिए, नाराज थी होना चाहिए अनुमान भाई को,
2: सल्यूट
1: किया वेंदा है कि भाई तुहाडे कोल ज्यादा मकाम दा कोई बंदा तुहाडे सामने आ गया जां कि तुसा सल्यूट मरेंदे पए वे।
2: बिलकुल, मैं रणवाल तो गल करे ना, मुलाजम दुकानदार परदेश की, मैं
1: बिलाल साइकिल अच्छा, बिलाल साइकिल अच्छा अच्छा ठीक है, बिलाल भाई अच्छा टांक ही चाहता है, चलो ठीक है, सलाम देना चाहते हो, क्या आखना चाहते हो उन्होंने?
2: ना वो को तो खैर हनुमान शेख को ऐसा समझे ना,
1: अच्छा सियाण बन ठीक है ठीक है ठीक है, तो अपना रेफरेंस देने पे अपने समझाने का
2: बिल्कुल बाकी मैं मुलाजिम दुकानदार अनवाल तो बात करें ना मेरी दुकान है घर भी कैसन के प्रोडक्ट मिलते हैं दुकान पे मिलते हैं बाकी आ जाओ सारे नाल त्रै किलोमीटर पे शबाज शहर को बंद है सारे को
1: मालिश करने उसी टाइम तक पता लग पा लेकिन मुस्तकिल तौर पर दर्द को जड़ को खत्म करने वास्ते कम अज कम हफ्ता इस्तेमाल जरूर करो
2: बिल्कुल
1: अच्छा कि मालिश करो ठीक है सही इतने तक मालिश करो कि हथा ते न रह वे जिसम बिल्कुल मुकम्मल तौर ते जज्ब थी वे ठीक है सही जनाब सारे दोस्तों को सलाम अखेने पेन सवाल सलाम तुसा जल्दी जल्दी कबूल करो
3: टैबलेट अब कह दो
1: एसएमएस कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं आप हमें 03449363333 और आज पहाड़पुर में हमारी ट्रांसमिशन एक दफा फिर से जनाब बहाल हो गई है और पहाड़पुर के लोग भी आज हमें सुन रहे होंगे तो जनाब तमाम पहाड़पुर वालों को जी जनाब और उनको मौका देने जा रहे हैं जनाब हमारे साथ देखते हैं कौन है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम जनाब हेलो हेलो
4: अस्सलाम वालेकुम
1: जी वालेकुम अस्सलाम सरनाल शाहजहान भीरा तो नहीं आ गए कि थी शाहजहान मेंबर
4: बिल्कुल सर बिल्कुल बहुत मेहरबानी थैंक यू
1: सुन दे पहले साकू अपने स्टेशन ते आज
4: बिल्कुल सुनते पे सर
1: अच्छा आज तो फजर तो तुसा ना गए ना किता उसी के घंटे दा लगातार सुनते वदे उसो
4: ना सर बिल्कुल लगातार सुनते पे ते आज ऐसा को बहुत मजा आंदा पे
1: अच्छा जी 12 13 दीवाना तो बंदा भूखा प्यासा होवे ना तो बस
4: जोड़
1: सटे सलाह के नुमान ने है जी तो एफ एम
4: बिल्कुल अल्लाह पाक खुश रखे भी सा
1: सर्दियां दा महीना आई तुसा मको इशाद टाइम कॉल कीती अवे कि ए केड़ी शय तुसा बड़ाई है ए तो मैं इक ही बार इस्तेमाल कीती है ते मैं तो बिल्कुल सुकून आ गई है गाल कोई सही
4: बिल्कुल
1: सब तो पहले दीवाना बना वाली शय सारा शिफाए दर्द है मेरा ख्याल है
4: बिल्कुल इन्हें गाल सर पहले मैं कैसा शिफाए दर्द की टाई लेकिन पहले सब तकलीफ थी पट पाली थोड़ी बहुत असा जेरे टाइम सीधी गाल है टूर बना तो मैं टूर भी नहीं सकता
1: दर्द थी ना जंगा दे विच जोड़ा दे विच पट्ठा दे विच
4: सर्दी में पट्ठे छिकाओ जान में छिकाओ आ कर रहे हैं
1: हां
4: ना मैं सर दिया से आउट कर दिया से बंदा बांधा छोटे पेशाब पे डटा लेता है इतने तकलीफ भी जाते डॉक्टर को ड्रिप पाते ही के बस जोर से गोली आते खराब नहीं आता
1: अच्छा जी
4: पहलवान
1: ताकत मिल गई पठे मजबूत थी वे पठां ताकत आई अकड़न होंगी अकड़े जेरे होने वो पठे ठीक थी मसल एक आदन बेसिकली तुसा बहुत सारे इन्हों पठा को ठीक करने वास्ते गोलियां मिल दिन मसल रिलैक्सेंट उन्हों को आदन तेल सारे काम करें पियो आंदे सही ठीक है जनाब एको तेल है ए तुहाडे दर्द को खत्म करेंदा पिए तुहाडे सूजन को खत्म करेंदा पिए तुहाडे मसल को ठीक जिहड़े अकड़े हुए मसल इन उन्हां को भी ठीक करेंदा पिए आंदे ते सुकून देंदा पिए आंदे
4: बिल्कुल ए गल सर ਕੇਸਨ ਦੱਸਲੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੇਸਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ
1: ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਸਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਸਨ ਦੇ ਲਾਵੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ
4: ਇੱਕੋ ਕੇਸਨ ਦਾ ਦਾਤ ਦੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਕੋ ਆਇਲ ਦੇ ਕੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਾਨੀ ਸੋਪ ਦੇ ਕੋ
1: ਵੇਟ ਕਮ ਪੇਟ ਕਮ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਰਪ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਵੀ ਦੇਖੋ
4: ਪਲੱਸ ਵੀ ਦੇਖੋ
1: ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ
4: ਨਵਾਜ਼
1: ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਪੂਰ ਬਿਰਾਕੋ ਜੀ ਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਤਰ ਮੁਰਗ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਗਫੂਰ ਕੋਲ ਪੰਜ ਗਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਕੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਵੈਸੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲਸੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਵੇਟ ਕਮ ਪੇਟ ਕਮ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾਇਤ ਦਰਦ ਵੀ ਮਿਲਸੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
2: ਜਹਾਨ
1: ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟੌਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਨਾ
2: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਚੰਗੀ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਾਂ ਸਹੀ
2: ਮੈਂ
1: ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਗਫੂਰ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ
2: ਨਹੀਂ
1: ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਗਫੂਰ ਕੋਲ ਮਨਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚਾ ਨੂਨੇ ਸੇਠ ਕੋ ਸਲਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਂ ਦੇ
2: ਦਿੱਤਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਅਮੀਰ ਕੋ ਮੈਨੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ
5: ਦਰਦ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਯੇ ਹੈ ਨਯਾ ਰਾਸਤਾ
1: ਚਾਚਾ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0344-936-3368 ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
4: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖਰੀਅਤ ਹੈ
1: ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੌਣ ਇਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੋ
4: ਮਦਨੀ ਟੋਨ
1: ਬੋਲੇਗਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਥੀ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾਦਾ ਪਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਵੇ ਬਹੁ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ
4: ਅੱਛਾ
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਦਰਾਂ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨੈਟ ਕਿਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੀ ਵਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਵੈਂਦੀ ਵੱਤ ਆ ਵੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦ ਵਾਰੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਮਾਨੁਰ ਰਾਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੀ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਸਨਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸਨ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਅਬਦੁੱਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆਸੋ ਚਾਹ ਪੀਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦੇਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
4: ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ ਮਾਨੁੱਲਾ ਰਾਹੀ हाँ जनाब, एफएम की दुनिया का एक सितारा कहा जाता है, क्योंकि आपको हर स्टेशन के ऊपर, हर एफएम के ऊपर, हर जो है रेडियो पाकिस्तान के ऊपर, कहीं पर भी आप रेडियो सुनते हैं तो आप चाचा अमानुल्लाह राही के नाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, एनीबॉडी देयर? हेलो जनाब, अच्छा जी, हमारा एक और सीन चल रहा है आजकल एम्प्टी बॉक्सेस का, और जिसके पास भी केसन के एम्प्टी बॉक्सेस पड़े हुए हैं, किसी भी चीज के, साबुन के, क्रीम के, शैम्पू के, ऑयल के, फेस वॉशेस की, हमें जमा कराइए। हर महीने के एंड के ऊपर हम एक विनर बनाएंगे जनाब, ठीक है जनाब। और ये विनर जो होगा, जी बिल्कुल, ये कैसा विनर होगा, इसको बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
6: खलील भाई, जी मैं वाले ठीक ठाक खैरियत?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन इंसान है नाल नाल से सुसे अपना?
6: ये तो साहब पहचानो, बस कोई का होना वेलकम आते हैं, बहुत खुशी से ये रौनक लाई बैठे
1: हैं। अच्छा सर सर सर सर आ गए सारे हैं जी, सर सर सर सर नजर हसन
6: जी जी। खलील भाई अमानुल्लाह चाचा तो मैं आला सुना है, कोई 44 साल को रेडियो थे आंदा
1: पेरे 44 साल को, अजीम इंसान था सही में, तो उन्होंने वास्ते गिफ्ट दिया जी ना उसकर देते से अच्छे इंसान नंबर नोट की गाल तो सुनो, कितना बजे पानी लगा हुआ था पिछू जितने सारे को जमा करवा गए उतने वाला की गिन के भी गए इस्तेमाल थीने पे उसने, मतलब मैं पूछने की जरूरत ही कोनी कि मुतमईन हुए कि नहीं जले तुसा ही
6: मजा आया हकीकत अल्लाह गवाह जी मैं तो साथ देवे ना कि अल्लाह को जान दे और एक बड़ी हकीकत है गुनाह की ना कसम नहीं चावनिया मैं को त्रीजी दीवार ग्लूटा वाइट आती
1: है। हां जी ग्लूटा वाइट तो पता लग गया कि वाकई यार इन कुछ है क्रीम
6: की चीज की जन मजीद इन मतलब डेवलपमेंट आई।
1: हां बिल्कुल इंप्रूवमेंट है इन्हीं तक मैं कहें तो आपको सारी प्रोडक्ट दिवी अगर कैमरे में कोई तब्दीली नजर आवे ना वो पॉजिटिव तब्दीली हो सी नेगेटिव ना हो सी
6: सारे आइटम बहुत अच्छे हैं बड़े बेहतरीन फ्रूटफुल थे रिजल्टफुल इन बड़ा मजा है जी।
1: शैम्पू दर से सो शैम्पू टांकला को दसो टांकला दे पास पानी होंदे नमक आला खारा पानी होंदे उनां दा ते असा स्पेशल उना वास्ते शैम्पू बढ़ाया यकीन करो तुसा ए तो को असल वेंदे पैसे लेकिन असल बढ़ाया सही ना लोगा वास्ते जेरा खारे पानी ते नमक आले पानी ते असर को भी खत्म करेंदा
6: ठीक
1: है जनाब, बहुत शुक्रिया। नजर हसन हमारे साथ मौजूद थे और हमारे मोहतरम टीचर हैं और जनाब सर सर हम इनको इसलिए हमारे सर का ताज है। और एम्प्टी बॉक्सेस का हमने ये सीन बनाया जिसके एम्प्टी बॉक्सेस जो है सबसे ज्यादा होंगे जनाब, सबसे ज्यादा होंगे उसे कैश प्राइज दिया जाएगा या हम कोई अच्छा सा इनाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम खरीन भाई की हाल है
1: जनाब? फैजान, क्या हाल है फैजान भाई, चंगे वदे हो ठीक ठाक?
7: पैकेज
1: खत्म है, दसो मैं अद्धा तो शबरे उस्ताद को गिनवा दे पूरे महीने का पैकेज लवा दिता है, एफ एम दे भी छुट्टियां थी गई कुछ मिनट तो सब भिजवा दे हुआ। करते हैं क्या ना लगे जल्दी
7: गुजारा करी सुख ना
1: ठीक है गुजारा करे सो हूं पैकेज तो को पिछले डूडिया
7: अच्छा
1: ठीक है
7: प्रोग्राम में सुने
1: हो। हम भी आपकी कॉल का इंतजार बड़े शौक से करते हो ठीक है
7: ना, ये को پہلا کال کی تے آواز تے نہیں آندا میں کا کی تے واپس تے کو کال کی تے او
1: ہاں ہاں بالکل پہلے آواز سوری نہیں آندی پی ہن بلا کے تری آواز آواں لگے تا کیسن دی کچھ ہے تری ہتے آئی ہے یا بس حال تک میں سارے گالیاں سن دے ودے فیضان ٹانگ جائے گا پھر ادھر سے حضرت خان کی دکان کو ڈھونڈے گا پھر ادھر سے لے گا ایسا ہے نا
7: بس میں حضرت خان کی دکان جو ہے نا بس پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں
1: مل رہا ہے کنا ٹھیک ہے
7: رزلٹ مل کرتے ہیں
1: رزلٹ مل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا فیضان بہت شکریہ مزہ آیا تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے اور ایسی کال کرتے رہا کریں ہمیں ہساتے رہا کریں آپ کی پشتو اور آپ کی کال کرنا ہی ہمارے لیے کافی جی جی اور لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اس وقت تک کیسن شاپ کے اوپر ہمیں جو ایمپٹی باکسز ملے ہیں نا وہ کمال کر گئی ہے تو ایک لڑکی پہلے انوشے نام ہے ان کا جو پہلے جمع کرا کے گئی تھی کرسچن کمیونٹی سے ہیں نظر حسن بھی دیکھے گئے ہیں لیکن بھائی ان سب سے آگے ایک لڑکی نکل گئی ہے اور اس کا نام ہے سویٹ والی درے

0: जिना बेहतर सर्कुलेशन के साथ एक प्यारी प्रोडक्ट जिसका नाम है केसन शिफा दर्द। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं और यकीनी बात है वो भी बोलेंगे कि वाकई ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट केसन का जादू है। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम खलील भाई, क्या हाल है सर?
0: शबीर उस्ताद की कुलसन नला चुके हैं सही, क्यों हाल है? ठीक ठाक बदे तुसा?
1: जी जी अल्लाह की मेहरबानी, मुबारकबाद है पूरे सामने चाहिए चार दे एरिया को सारे को क्योंकि एकदम तकलीफ है और उनके खिलाफ ज्यादा ग्राम को मैं इताजियत करे सा सोच करे सा क्योंकि शराब आ चुका है, उन्होंने बड़ा काफी नुकसान किया। ऐसा दुआ करेंगे अल्लाह पाक उन्होंने घर को बड़ा बसा ले और शामिल है सारा फर्क छुड़ाया पहाड़पुर का एरिया जितना भी कोशिश करो शिकायत है क्योंकि बल्कि उन्होंने राशन मिल जाए उनके घर मिल सके बारह हक न खाओ उन्होंने दो सारा हक हक उन्होंने दाद दो ना कि तुम ना लिखा दे गलत हराम खा दे तक घर का राशन पहुंचाया राशन दे घर घर इमदाद करे तो मैं सारा को अपील करे जो उन्होंने खरीद खुशा आए और उन्होंने इम्तिहान दे को पूरा है जरा कामयाब करो ताकि जरा आपकी सर्वे कहेंडाकानी टीम जीते ड्यूटी लगी है इंशाला जो है बाकी सजाए जो है ना एक बहुत सारी बीमारी हुई जो खासकर वे बनी हुई चाहे बुजुर्ग चाहे सारिया बच्चे या कोई दिल पचास नहीं बचे
0: बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात है, एक तो सुबह भी हमने प्रोग्राम के अंदर ताजियत की है उन मुतासरीन के साथ जो एक कुदरती आफत सी आरबीसी से पानी पहुंचा पहाड़पुर में और बहुत सारे इलाके जो है जेरे आब आए और कहते हैं कि 12-12 फुट तक पानी था और आप खुद सोचिए कि 12 फुट तक पानी जब होता है तो वो कितनी बड़ी तबाही लेकर आता है। अल्लाह ताला उनकी इस मुश्किल को दूर फरमाए और सबर की तौफीक अता फरमाए क्योंकि जानी और माली नुकसान जब हो तो उस वक्त भी इंसान को अफसोस जरूरी बात होता है लेकिन अल्लाह ताला अजर देने वाले हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब इसब खान सा टांग को मौजूद है सर, ठीक है तुसा? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। प्रोग्राम सुन दे बैठे हुए सही अच्छा, कॉल नहीं लगती लेकिन प्रोग्राम सुन दे रहे हैं
1: सुन
0: दे हाँ उन्होंने एफ एम आज खुल गई शबरे उस्ताद बंद थी आप पिछले 12-13 दिन कॉल
1: इो
0: तेल जी गाल करने पे शिफाय दर्द
1: ताकत प्लस।

0: शिफा दर्द भी हर जगह मौजूद है और ये पेन किलर नेचुरल रेमेडी इसको बोलते हैं जिन्हें आप कुदरती तौर पर आपके जख्म ठीक करते हैं। हम जख्म का मतलब होता है मौज जो आपको आती है। इसको घर में रखेंगे, यकीन कीजिए आपको कहीं दूर जाने की डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटा मोटा दर्द, मसल पुल हो गया, गलत सो गए रात को, सुबह उठे परेशानी का सामना है, ठीक है जनाब। इसी तरीके से बाजू बाजू का सोते हुए नीचे आ जाता है, वो भी आपकी परेशानी के सबब बनता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मसाल जो कि अचानक पैदा होते हैं उनका हल है। इसके अलावा उन लोगों के लिए यार बहुत ही जबरदस्त है जो नमाज नहीं पढ़ सकते सही तरीके से, उठना बैठना वो इशारों से नमाज पढ़ते हैं। पट्ठों की कमजोरी है बेसिकली, हड्डियों की कमजोरी है बेसिकली, ये पट्ठों की अकड़न है जो आपको रुकू नहीं करने देती। आपके पट्ठे दर्द में मुब्तला हो जाते हैं जब आप रुकू के लिए जाते हैं, जब आप सजदे में जाते हैं तशहुद में इस तरह। तो ये सारे मामलात कब होते हैं? जब आपके पट्ठे अकड़ जाते हैं। तो ये अकड़न को खत्म करने वाला और स्वेलिंग को खत्म करने वाला, हड्डियों को ताकत देने वाला ये बहुत ही प्यारी हमारी प्रोडक्ट है केसन शिफा दर्द जो कि शुतुरमुर्ग की चर्बी से इसको बनाया गया है।
1: भूल जा
0: टांग के अंदर आप हर जगह पर आप मौजूद होगा, लेकिन मेन हमारे स्टॉकिस्ट हैं सदाम प्लाजा के अंदर है जनाब मंसूर जनरल स्टोर हाजी जरबत खान के पास आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। इसी के अलावा अलबदर मार्केट के सामने है वहीद जनरल स्टोर। इसी के साथ ही सदर प्लाजा की जो बेसमेंट है जो तहखाना है वहां पर अलमदीना है, वहां पर मिलेंगे। फहीम जनरल स्टोर है अलबदर मार्केट में और गुलाम जान जनरल स्टोर ट्रैफिक पुलिस के साथ यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। केसन में हर केसन के प्रोडक्ट डेरा इस्माइल खान में हर जगह आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सलमान खान, हिम्मत से शो गुड है, मैं बस लिखने के हद तक पुरकशिश हूँ, मुश्त गुफ्तगु आपको बेजार कर देगी।
1: पत्थों की अकड़न जो
0: जी
1: दर्द भूल।
0: सलाम लाला खलील मिठा जोक बशारा से शिराज शहानी। सलाम राजा गफूर फौजी अमजद लाला सुवारू नजर हसन। सलाम टू ऑल लिसनर्स, क्या बात है केसन की,
1: है।
0: आपकी किस किस प्रोडक्ट की तारीफ करो, सब ही आला है, सब ही सोना है, क्या ही बात है, आप खुद जो सोना है शिराज भाई।

0: जी आप स्वीट स्वीट वाली दुर्योधन की बात कर रहे थे, आज इन्होंने एम्प्टी बॉक्सेस हमें भिजवाए हैं और बहुत बड़ा बैग भरा हुआ है, हमने अभी तक उनको काउंट भी नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है देखने में पता चल जाती है कि अब तक जितने लोगों ने भी हमारे पास एम्प्टी बॉक्सेस जमा करवाए है ना, उसमें मुझे अब तक जो है सबसे ज्यादा जो एम्प्टी बॉक्सेस है वो दुर्योधन के लग रहे थे। यानी आगे लोग और भी जमा करा रहे हैं। एक फैमिली है जो हमें सुन रही होगी, अक्सा, अक्सा खान की फैमिली, अक्सा गुल की फैमिली। एक तो उनको बताते चले कि लास्ट टाइम आए थे तो बहुत सारे प्रोडक्ट शार्ट थे, तो अभी सबके सब प्रोडक्ट रिस्टॉक हो चुके हैं, कोई भी चीज शार्ट नहीं है इस वक्त, तो आप किसी शॉप पर तशरीफ ला सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास बॉक्सेस मौजूद हो ना, तो मैं शर्तिया कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में डेर इस्माइल खान या सराउंडिंग में अगर किसी के पास खाली बॉक्सेस हो सकते हैं तो वो जो है अक्सा गुल की फैमिली। ये साइलेंट हमारे लिसनर हैं, इनकी मैसेजेस नहीं होती, इनके कॉल्स नहीं होती हैं, लेकिन इनकी पूरी फैमिली पूरे इन्हेमाग तरीके से केसन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो है इनकी जो शादीशुदा बहनें हैं वो भी माशाल्लाह आती हैं और वो भी केसन के प्रोडक्ट खरीद के जाते हैं। सो अगर वो सुन रही हैं तो एम्प्टी बॉक्सेस आप भी जरूर जमा करें, आपका भी राइट है इस कंपटीशन में आए, क्योंकि आप केसन के मैक्सिमम प्रोडक्ट खरीदने वाली पार्टी है। इसी तरीके से केयू हया खान जो है, हया खान वो तो आती रहती है हमारे शो में, उनके पास भी जो बॉक्सेस होंगे ना, मेरे ख्याल में वो शापर का काम नहीं है।
1: शफाए
2: बेहतर सर्कुलेशन
0: हर। अच्छा जी, ये हम आप लोगों के लिए केसन शॉप डेर इस्माइल खान में एक और अगले हफ्ते से एक ऑफर शुरू कर रहे हैं कि 1500 की खरीदारी के ऊपर। पहले इस तरह होता था कि आप एक प्रोडक्ट भी खरीदते थे तो आपको एक कूपन मिलता था, ठीक है, और दो खरीदते थे तो दो कूपन मिलते थे, इसी तरीके से 10 कूपन खरीदते थे तो आपको 10 कूपन मिलते थे। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा माहौल चेंज किया है और 1500 की खरीदारी के ऊपर आपको एक कूपन मिलेगा, लेकिन उसका इनाम हम काफी बड़ा रख रहे हैं। ठीक है जनाब, जो 1500 की चीजें खरीदेगा ना किसन शॉप से 1500 रुपए की, तो उसके ऊपर उनको एक कूपन मिलेगा। इस तरीके से महीने में अगर वो दूसरी दफा आएंगे, यानी कि वो 1500 की और खरीदेंगे, तो उनके दो कूपन होंगे। लेकिन उसके ऊपर हम गिफ्ट जो अनाउंस करेंगे वो बहुत अच्छी प्राइस का कैश प्राइस भी हो सकता है। तो अगले महीने से या अगले हफ्ते से जो कूपन का सिलसिला है केसन शॉप के ऊपर, वो फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और वो वर्थ ऑफ 1500 यानी कि 1500 की खरीदारी के ऊपर आपको एक कूपन मिलेगा। सो दुर्योधन द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट। खूबसूरत होना भी आसान नहीं, नजर लग जाती है। देखो कितने दिन से बुखार ने मुझे आया, बुखार मुझे आ गया। अच्छा, ऐसे ही जरा केसन लगाएंगे तो खूबसूरत तो होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुसा जी, वेलकम टू द हमारा अपना शो। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हम लिसनर्स के साथ रहें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं और हमारे पास केसन है। जी बिल्कुल, आपके साथ साथ ही है केसन के साथ प्रोडक्ट के साथ। हमजा कुराई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जनाब, कोशिश हम करेंगे कि अगले 2-4 दिन के अंदर ये कूपन की सीरीज वर्थ 1500, ठीक है जनाब, 1500 रुपए के कूपन, 1500 की खरीदारी के ऊपर एक कूपन मिलेगा, ठीक है जनाब। और जितने लोग भी आएंगे महीने के एंड के ऊपर उनकी कोई अंदाजी होगी, और जितनी ज्यादा तादाद में लोग होंगे, वो कैश 5000 का भी हो सकता है, वो कैश प्राइस 10000 का भी हो सकता है, जितनी बड़ी खरीदारी आपकी होगी, ठीक है जनाब, उतने बड़े आपको इनामात मिलेंगे। आयत खान हमारे साथ हैं।
1: जोरों
0: का कार्ड मैं भूल तो नहीं रहा, कोई चुटकी काट ले, नींद में तो नहीं हो,
1: जख्म भूल जा,
0: ख्वाब में तो नहीं हो।
1: सर्कुलेशन
0: आयत, आयत खान, एक वक्त था कि आयत ने एक महीने के अंदर 100 कूपन बनाए थे, 100 कूपन बनाने वाली ये लड़की। इनको हमने 3000 कैश प्राइस दिया था और इसके साथ 5000 के और भी इनामात दिए थे, कुल मिला के 8000 के हमने इनामात आयत खान को दिए थे। तो जनाब, ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी। आयत, आपको वेलकम करते हैं, डेली आया करें, हमारा शो डेली होता है। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने किया।

0: ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशीला, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो की लहरों पर बिखरती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आरशे अंसख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है। और तमाम सुनने वालों को, बहनों को, भाइयों को, अंकल आंटी जो मुझे जहां जहां से भी कहां कहां से भी सुन रहे हैं या सुन रही हैं उनको वेलकम जी। आयन पखैर आखले सद बिस्मिल्ला। बिल्कुल जनाब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। आयन कहते हैं सेहत के पैगाम में सामयीन, सेहत का पैगाम जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। सो रोजाना की तरह आज भी बिल्कुल लाइव और बराह रास्त आपका मेजबान आज अंसख्तर और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब तशरीफ फरमा है। खवातीन हजरात, इस शो में बात होती है, इस सेशन में हम बात किया करते हैं आपकी सेहत के बारे में, आपकी जो सेहत है। सामने कराम, हमारी सेहत जब तक ठीक ना हो तो दुनिया की दौलत हो, शोहरत हो या कोई भी काम हो, बंदे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपकी सेहत ही ठीक नहीं होती। सो अगर आपकी सेहत के मुतालिक आप कोई सवाल अपने जहन में रखते हैं, आपके दिल में कोई सवाल है, तो इस शो में आप कॉल के जरिए, SMS के जरिए हकीम साहब से पूछ सकते हैं और आपकी सेहत के हवाले से जो मसला है उसके हवाले से मशवरा भी ले सकते हैं, कोई टोटका कोई नुस्खा भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा मसला है जिसका इलाज करा करा कर आप थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं और आपने कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के हर डॉक्टर के पास, हर हकीम के पास गया हूं लेकिन मुझे शिफा नहीं मिलती, तो सामईन आपकी खिदमत में ये शो अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से पेश किया जाता है। अलशिफा दवाखाना जहां पर देसी टिप के माहिर हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब तशरीफ फरमा होते हैं। बिल्कुल खवातीन हजरात, ऐसे फरमा होते हैं हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब जो कि मरीजों का चेकअप मुआयना रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रखते हैं। सो इसके साथ जो है आपको कोई भी मसला है, चाहे आप मैदे के हवाले से बीमार हैं, चाहे आपके दर्दों के मसाइल हैं, चाहे आपको कोई भी मसला है, आपने बहुत सारे इलाज कराए हैं आपको शिफा नहीं मिली, तो आपकी खिदमत में अलशिफा दवाखाना हाजिर है। टांग को मजाफात वजीरिस्तान के जितने भी मरीज हैं, लिस्नर है, आपको कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप तंग हैं, तो आपकी खिदमत में एक ऐसा हकीम साहब हाजिर है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब। तो बिल्कुल खवातीन हजरात, हमारे साथ ऑन ये स्टूडियो में भी मौजूद होते हैं और रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में भी मौजूद होते हैं और मरीजों का जो चेकअप मुआयना है वो जारी रखते हैं। दीन लगा जनाब चे सुन रहा पुख्तनाज खयांदे वा प्रोग्राम वर भी सेहत का जनाब सांस ठोलत हम प्रोग्राम की हर कलैम आयम ग्रहण वाली दिन को अब प्रोग्राम की मुंग खबर को दस्तास सेहत बारे के अहम मसले दस्तास सेहत वाली सर भी मतलब से ये दास भी मरी है चिस्तास डी ज्यात लजुना वाल लकड़ी भी और अगेन बाद हम स्तास जिसमें शिफाद आन मिलावे भी कबिल के जनाब स्तास द पैरा द टांक के ये दास क्लिनिक मौजूद दे हकम तो ये लकी की अलशिफा दवाखाना अलशिफा दवाखाने बंदे द इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये दास काबिल और तजर्बकार हकीम साहब हम मौजूद दे। बिल्कुल जनाब खबर को हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब ये दास काबिल और तजर्बकार हकीम दे और दीस काबिल तजर्बे दाद देसी टीप के देसी तरीका इलाज के और अह खयान दे अह अबरुना सुच द मुख्तलिफ बीमारियां चिकित शिवी दी मसलन द मेदी मसले दी द जड़ मसले दी द दर्दो मसाइल दी सासु बवासीर दा खूनी दा आबादी दा कस्तासु द गुर्दो मसले कस्तासु चीर दमख मसले भी सास पमख बनिकिल भी महासी भी छयानी भी या दीन अलावा नूर सासु चीर हिंद सेहत वाले सरा मसले भी इनशाला हर किस्म बीमारी डीरा पास अंतिया सरा और डीरा पखकुली तरीके बने शिफा दवाखाने बने गई। बिल्कुल खवातीन हजरात, इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी इलाज डीरा पर तसली सरा अलशिफा दवाखाने बने कीगी। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के अबुल तो जनाब चिकन दा देसी तरीका इलाज दा ग्रहण आबिदन को दा बिर आसान दा अरसान दा और बेसर तरीका इलाज दा और दी इच किस्म हम साइड इफेक्ट नश्ता चम हम दस पीशीस दी चीज ज्यादा लजुना कड़ी भी वही से नस बाई जद डी रोजा तो डॉक्टर में लगर से दिल है और शिफा में न मिला वेगी वो फिर चिस्सा से चीफ रावड़ी अल शिफा दवाखाने

0: الشفاء دواخانه شوال مارکیټ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. سو بالکل جناب جی میری بھونی ابراہم میں کسرا کے سونے پین تو سارا کو میں صحت دے خزانے دے وچ ویلکم ادا کہ رکیل شفا دواخانه دے خصوصی تاں نال تو خدمت وچ پیش کیتا پیا ویندا ہے. تامل کو جناب جی بھونی ابراہم سننے پین تسا کوئی ایسی بیماری دے وچ مبتلا ہو دے وی جیندا علاج تسا کرا کے تھک چکے ہو مایوس تھی چکے ہو تو ہن ایک ایسے مالک دے انتظار چی ہوئے تلاشی چی ہوئے کوئی ایسے علاج تلاشی چی ہوئے کوئی سائڈ افیکٹ ہی نہ ہوئے کوئی نقصان ہی نہ ہوئے تو سے صحت یاب تھی ہوئے. تبھی تو جناب تو سامت سی پروگرام سننے پہ بجے کو آخا میں دے صحت دا پیغام جیڑا کہ الشفا دوا خانہ دے خصوصی تاؤں نہ تواری خدمت اچ پیش کیتا پیا ویندا ہے. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ حکیم صاحب نے روزانہ فجر لے 8 بجے کو چاہ کے شام 4 بجے تک موجود ہونے تے مریضوں دا چیک اپ پوائنٹ جڑے ہے جاری رکھے. تو بالکل جناب چلیں گے صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے. آپ کے جو سوال ہیں وہ بھی حکیم صاحب کی جانب کنوے کریں گے. سو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09638 511 488 پر 09635114888 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آج حکیم صاحب سے ہم ایک ایسی سبزی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ عموماً ہم سردیوں میں استعمال کیا کرتے ہیں, ویسے بھی استعمال کرتے ہیں. سو اس کے فائدے اور ان سے کون سی یاد بنتی ہیں, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ دیسی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہوتا ہے, بالکل ہربل ہوتا ہے, دیسی ہوتا ہے. تو آج ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے ساگ کے بارے میں. ساگ کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں, ان سے کس چیز کی میڈیسن بنتی ہے. تو چلیں گے جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک.
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: آج کا دن بھی دوسرے دنوں کے کام بہتر رہا, اللہ کا شکر رہا,
0: چلے
1: کافی بہتری رہی.
0: چلے ماشاء
1: اللہ انشاء اللہ آہستہ آہستہ آہستہ
0: ایسی بات ہے. بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ساگ کے بارے میں آج ہمیں بتائیے آپ.
1: دیکھیں ساگ تو بے شمار ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: سرسوں کا ہے, پلائی کا ہے, مختلف ہیں. اچھا جو ان میں ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اور جس کی کثرت سے دوائیاں بھی تیار ہوتی ہیں خاص کر دردوں کی, ان میں ہے جسے عام لفظ میں کہیں تو مرنگا اور دوسرے میں کہیں تو سہانجنا. سہانجنے کا ساگ بھی کہلاتا ہے, سہانجنا بھی کہلاتا ہے. اور عموماً پنجاب سائڈ پہ آپ جائیں وہاں بھی یہ لوگ گھروں میں پکاتے ہیں سبزی کے طور پہ, اور اس کا پانی جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے پانی میں ہی ہم لوگ باقی کی دوائیاں ملا کے جیسے جو کٹی ہوئی ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں,
0: ایسی بات ہے,
1: اس کی مدد سے گولیاں بنا لیتے ہیں یا اس کو اس کے پانی کو بیچ میں خشک کر کے تو اس کے کیپسول بھر لیتے ہیں اور یہ دردوں میں بہترین کام کرتی ہے. اب سہانجنا جو ہے یہ اب کا نہیں ہے, وہ صدیوں سے استعمال ہو رہا
0: ہے.
1: آج کل یہ ضرور ہوا ہے کہ تھوڑی جدت آئی ہے سہانجنے کے کیپسول, سہانجنے کی گولیاں باقاعدہ پیکنگ میں بک رہی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی جو ہیں وہ اسے تیار کر کے تو وہ ہر پروڈکٹ کے طور پہ دے رہی ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن اس کا افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہے تو عام سی جڑی بوٹی, ہم لوگ پکاتے ہیں ایک ساگ ہے, لیکن اس کے جو پتے ہیں اس کی جو پھلیاں ہیں وہ سبزی کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں اور میڈیسن میں میڈیسن کے طور پہ بھی ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. باقی اس میں پوٹاشیم ہے, کیلشیم ہے, اس میں فائبر ہے, اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ہمارے جسم کو ضرورت ہے اور اسپیشلی یہ دردوں پہ بہت زیادہ افیکٹو ہے.
0: ایسی بات ہے, ہاں.
1: اب قدرت نے اسے کہنے کے غذائیت سے بھرپور درخت بنایا ہے یا پودا بنایا ہے, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ہر بیماری کا حتمی علاج سمجھنا
0: ایسی بات
1: وہ درست نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: کیونکہ کسی بھی آپ کو درتی چیز کو قدرت نے بے شمار جڑی بوٹیاں دی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, لیکن ان کے فائدے بھی ہیں اور لوگ ان سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں. سنبل ہے, سنبل کی لکڑی لیتے ہیں, پیستے ہیں, دردوں کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں, اسی طرح بے شمار ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مریض کا مرض کس نوعیت کا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اور ایک جو سائنسی تحقیق ہے वो क्या कहती है,
0: ठीक है।
1: फिर आप जब उसको उस कंपेयर करके मरीज की कंडीशन देख के उसके मुताबिक जब आप उसे फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट भी बहुत बेहतर आता है। हाँ, ये जरूर है कि देसी अद्वियात के नुकसान बहुत कम है, सिर्फ उसकी मिकदार वो देखनी होती है। अब जैसे मोरिंगा ही है, अब लोग उसका साग बना के खाना शुरू कर
0: सी बात है हाँ।
1: कि हर दूसरे दिन, तो जरूरत से ज्यादा जो मिकदार है वो नुकसान भी देगी, उसी की भी करेगी,
0: ठीक है। ठीक है,
1: बाकी इसका विटामिन मादनियात फाइबर और जो दूसरे दवाई अफजा हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको खुराक के तौर पर, यानी आप इसे हफ्ते में एक दफा बना लें। दूसरा यह है कि अगर इसके पत्ते आते हैं तो उसके पत्तों को आप खुशक करके,
0: ठीक है,
1: और इसके आप कैप्सूल भर सकते हैं, वो भी दर्द में इस्तेमाल होते हैं। इसका आप पहले तो कावा बना के पी सकते हैं जिस चाय के तौर पे। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सी गलत फहमी दूर करनी है हम लोगों में जो है, उसमें हम भी शामिल हैं कि हम भी उसी इतनी पीते हैं कि काली चाय का हालांकि कावा गर्मी खुश्की करता है, कावा बेहतर नहीं है। हम लोग उसमें दूध डाल के उसको चाय का नाम देते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: ठीक है। और चाय पूरी दुनिया में, बल्कि पीछे मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें पाकिस्तान में तकरीबन एक साल में 7 अरब रुपए की चाय
0: पी जाती है,
1: ठीक है,
0: ऐसी बात।
1: अब चीज ये है कि आप चाय तो हम पीते हैं लेकिन चाय सही तौर पे है क्या,
0: ठीक है ना, ये है क्या।
1: अब मसला ये है कि आप इसका जो सही तरीका है जो तिब के लिहाज से,
0: ठीक है, हाँ जी,
1: वो तो ये है कि आप पहले पानी को उबाल लें,
0: ठीक है,
1: जितनी आपने एक कप, दो कप या तीन कप बना,
0: ठीक है।
1: जब पानी आपका अच्छी तरह उबल जाता है उसमें आप थोड़ी या हस्बत जितनी आप महसूस करते हैं
0: हस्बत जरूरत
1: चाय की पत्ती डालें और उसको कुछ तकरीबन 10 मिनट के लिए ढांप के रख लें,
0: ठीक,
1: चूल्हा आपने बंद कर दिया,
0: हाँ जी।
1: अब उसको 10 मिनट के ढांपने के बाद हम जब उठाएंगे तो जो पत्ती का जेन्युइन कलर होता है ना वो सारा उस चाय के पानी यानी उस उबले हुए पानी में आ गया,
0: ठीक है, ठीक है।
1: आपने उसको लिया, उसको छाना,
0: हाँ
1: और फिर उसको आप गर्म कर लें, पका लें, वो जो चाय है या वो जो ओरिजिनल कावा बना है असल में चाय वो है। वैसे आप देख लें, आप काली पत्ती का कावा बनाते हैं, आप अगर चाय उसका घूंट भरें तो वो आपको कड़वा महसूस होगा कि चाय कड़वी है। अब उस कड़वाहट को जायका मुंह को बदलने के लिए या कह लें कड़वाहट को मिठास में बदलने के लिए हम लोग फिर दूध का इस्तेमाल करते
0: हैं, ऐसी बात है,
1: तब वो दूध चाय, दूध वाली चाय होगी,
0: बिल्कुल ऐसी बात।
1: हालांकि अगर चाय का मकसद लें जो तिब कहती है तो वो यही है कि आप पानी को उबालें, उसमें पत्ती का रस निकालें और उसको बाद में आप छाने, मजीद थोड़ा अगर पकाना चाहें तो उसको बेशक पका लें, उसके बाद आप उसे छान के कपों में निकाल के और आप कप के तौर पर इस्तेमाल करें,
0: ठीक है,
1: आप उसका जायका ही सबसे अलग महसूस करें।
0: अच्छा हकीम साहब, आपने बात की है कावे के हवाले से कि जिसम के अंदर जाना गर्मी बढ़ाता है,
1: काली पत्ती,
0: काली पत्ती,
1: बिल्कुल।
0: तो सर्दियों में यानी कि सख्त सर्दियों में पीना कैसा है, या हमारे वो बहने वो भाई जो यहाँ से वजीरिस्तान में रहते हैं जहाँ पर मौसम अक्सर ठंडा ही रहता है, तो वहाँ पर ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
1: ये बताइए। देखिए, कावा कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, हम खाली काली पत्ती का नहीं पीते, सबस पत्ती का भी कावा चलता है, लेमन ग्रास वगैरह बेशुमार है। चीज ये है कि आप इसको उस तरह तैयार करें जिस तरह के उसका तैयार करने का हक है,
0: ठीक है,
1: और जो उसका जेन्युइन तरीका है जो आपके जिस्म में गर्मी खुश्की नहीं देता बल्कि आपको एक सरूर सा भी देता है,
0: हाँ जी,
1: वो यही है कि आप पहले पानी को उबाल लें,
0: ठीक है,
1: उसके बाद उसमें थोड़ी पत्ती डालें और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखें ताकि पत्ती का जो रस है, सारा जौहर जो है वो पानी में शामिल हो जाए,
0: ठीक हो गया।
1: बाद में आप उस पानी को छान के उस पानी को दोबारा थोड़ा पका लें, फिर आप उसमें हसबे जायका अपना मीठा डालना चाहते हैं तो आप डालें, लेकिन कोशिश करें कि आप चीनी की बजाय गुड़ या शक्कर ये इस्तेमाल कर लें, वो सबसे बेस्ट है,
0: चलें, ठीक है,
1: ठीक है। उसके बाद जब आप उसका घूंट भरेंगे तो वो आपको कावा जो है वो अलग ही लज्जत देगा,
0: ऐसी बात है।
1: फिर अगर आप चाहें तो आप उसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन जो चाय है, चाय का मकसद है बगैर दूध के, लेकिन वो एक सरूर, एक नशा और एक ताकत दे,
0: ठीक है।
1: बाकी बात हो रही थी मोरिंगा
0: की,
1: ठीक है। तो आखिर अब बातें पूछते हैं कि यार
2: इसके जो पत्ते आप खुशक करके पाउडर बनाते हैं, कैप्सूल गोलियां बनाते हैं, क्योंकि मेरे दवाखाने में भी मोरिंगा से बने हुए जो है फार्मूले मौजूद हैं। मेरा अपना नुस्खे बने हुए हैं इसके मोरिंगा के, जो कि स्पेशली मैं दर्द के मरीजों को इस्तेमाल भी कराता हूँ।
0: अच्छा, मोरिंगा के फार्मूला के पास बने हुए?
2: हाँ, मोरिंगा का जो है जूस है, जौहर है इसका, उसके जरिए ये इसकी दवाई बनी हुई है जो मैं दर्दों के मरीजों को इस्तेमाल कराता हूँ।
0: ठीक है,
2: क्योंकि किसी जमाने में हम लाहौर शहर में तो खैर हम सुहांजने का साग मिलता है,
0: ठीक है,
2: पकाते हैं, तो जब घर पकाया जाता था तो इसका जो पानी उबालते थे साग उसमें, तो वो जो पानी था वो जाया नहीं होने देते।
0: अच्छा, ठीक है,
2: हम उसी को गोलियां बनाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे बजाय के कुछ सादा पानी ले।
0: ठीक है,
2: वो मोरिंगा का पानी उसमें दवाई डाली, जड़ी बूटियां जो दूसरी हैं, इसमें अश्वगंधा है, इसमें बेशुमार आ जाए, उसको डाल के फिर हमने उसकी गोलियां बना ली।
0: ठीक है,
2: हाथ से, और वो काम करती थी। उसी फार्मूले को जहन में रख के अब ये है कि अब जिद्दत आ गई है।
0: ये तो जिद्दत आ गई, ऐसी बात है।
2: पत्ते खुशक करते हैं, उसके बाद आप इसको पाउडर बनवा लेते हैं।
0: ठीक है,
2: फिर आप चाहें तो आप दाइयों के जरिए गोलियां बनवा लें, और वो गोलियां फिर यानी कम वक्त में ज्यादा बन जाती हैं।
0: ऐसी बात
2: है, उस तरह आप हाथ लेके बैठे रहेंगे, एक एक गोली बनाएंगे। अब ये है कि उसको देखना यह है कि ये काम करती है, बिल्कुल काम करती है। इसको मैंने अपने दवाखाने में बल्कि यहां अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी इसको इस्तेमाल कराया, दर्दों में बेहतरीन साबित हुई है। दर्दों के साथ साथ ये मैदे के मामले में, ये असाबी कमजोरी में, ये आयरन की कमी में, यानी ये एक ऐसा कुदरत ने एक पौधा पैदा किया है के जो आपकी पूरी बॉडी के लिए एक जनरल टॉनिक है।
0: जनरल टॉनिक
2: के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इसमें खौफ खतर नहीं है। आप इसे छोटे को देते हैं, बड़े को देते हैं, बस उसकी मिकदार देखनी होती है।
0: बिल्कुल ऐसी बात।
2: दूसरा ये है कि ये जिस्मानी कमजोरी में भी बेहतरीन है। बाजे दुबले पतले कमजोर होते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ रीजन जानना होता है कि यार इसकी कमजोरी की वजूहत क्या है, तो
0: मैदे
2: की सलाह करें,
0: ऐसी बात है,
2: उसकी खुराक भी ठीक करें अगर खुराक कम है, और अगर उसे कोई पोशीदा मर्ज है तो फिर उसका भी पता चला के और उसका इलाज करें।
0: ऐसी बात,
2: तो फिर इंशाल्लाह उसके वजूद में ताकत भी आएगी, उसके पट्ठों में भी ताकत आएगी। इसको आप अगर मैदे के हाजमे के तौर पे लेते हैं, ये हाजमे पे भी बहुत जबरदस्त काम करता है।
0: ठीक है,
2: इसमें गैसों को खारिज करने की ताकत है, इसमें मैदे को ताकत देने की ताकत है, इसमें कब्ज को दूर करने की ताकत है।
0: ठीक है,
2: दूसरा कि आप इसको शुगर का मरीज है वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। शुगर की वजह से जो असाबी कमजोरी वो महसूस कर रहा है वो भी ठीक होगी, उसके साथ साथ उसके मैदे की भी इसलाह होगी, उसका पिंक्रियास या लबलबा जो है वो भी ताकत पकड़ेगा। यानी आप इसे उसके शुगर के मरीज को भी दे सकते हैं, आप इसको ब्लड प्रेशर के मरीज को भी दे सकते हैं।
0: ठीक है,
2: बल्कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको आप हाई ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरा कि आप इसको बवासीर है,
0: अच्छा,
2: ठीक है, उसमें भी बाज दफा ये होता है कि आपको गर्म खुराक गर्म कोई चीज नहीं दे सकते,
0: ऐसी बात है,
2: लेकिन वहां भी ये काम करता है। फिर दूसरा बाज कह लें कि सुहांजने का जो फायदा है वो ये है कि बाज में खून की कमी हो जाती है,
0: ऐसी बात है, हाँ,
2: ये खून की कमी को भी दूर करता है।
0: सुहांजना ठीक है,
2: इसको आप खुराक के तौर पर लें, सुबह शाम अगर इसके कैप्सूल बना लें, इसकी गोलियां बना लें, तो आप इसे सुबह शाम।
0: अच्छा, हकीम साहब, सुहांजने का जो बंदा साल में बनाकर खाता है तो क्या वो भी यही फायदे दे सकता है या नहीं दे सकता?
2: बिल्कुल देता है, लेकिन हम उससे एक सब्जी के तौर पर उस टाइम इस्तेमाल करेंगे।
0: हाँ,
2: और ये नहीं होगा कि अब रूटीन में रोजाना ही सुहांजना बनना शुरू हो जाए, घर वाले भी तंग हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि हफ्ते में कम से कम अगर एक दफा बना लें तो कम से कम जोड़ों की दर्दों से, मैदे की तकलीफ से,
0: ऐसी बात,
2: असाबी कमजोरी से, शुगर में कोई वीकनेस से, या हाई ब्लड प्रेशर रहने की परेशानी से,
0: बिल्कुल
2: उसमें बचा जा सकता है। आप इसे सब्जी के तौर पर बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। बस कोशिश करें कि उसमें नमक की मिकदार बहुत कम हो,
0: ठीक है,
2: और मिर्चें जो हैं वो सुरख ना हो बल्कि सब्ज मिर्चें या काली मिर्चों का इस्तेमाल हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। बाकी इसको आप तो अगर उस तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपकी खून की कमी को दूर करेगा, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाएगा,
0: ठीक है,
2: ठीक है, ताकि आप छोटे मोटे जो तकलीफें आती हैं उनका जिस्म मुकाबला कर सके, उसकी वाइटल पावर बढ़ेगी,
0: ठीक है।
2: फिर दूसरा कि हमारी जो स्किन है ये बड़ी सेंसिटिव है, ये स्किन पे भी जो है बहुत बेहतर काम करता है, यानी पिंपल्स में गर्मी दाने निकल आते हैं, बारिश हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत बेहतर है, छाइयों पे काम करता है, झुर्रियों पे काम करता है, ये जिल्द को टाइट करता है, वक्त से पहले यानी चेहरे पे बुढ़ापा नहीं आने देता,
0: हाँ जी,
2: तो इसको आप उस नजरिए से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं,
0: बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसी बात है बिल्कुल,
2: तो ये बालों की ग्रोथ भी करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों की नशोनुमा को बढ़ाता है, बालों को सिल्की और उनका जो ओरिजिनल स्याही कलर है
0: ऐसी बात
2: वो भी काम को भी कायम रखता है। इसमें एक नहीं बहुत से फायदे, ये टेंशन पे, डिप्रेशन पे, स्ट्रेस पे ये काम करेगा,
0: ठीक है,
2: ठीक है, इसका ये फायदा है। बाकी अब इसको इस्तेमाल जो है वो तो जाहिर है कि आप इसे सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके खुशक पत्ते जो हैं उनको पाउडर करके और आप उनको कैप्सूलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले लें पानी से, या फिर इसकी गोलियां और वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं। बाकी पेशेंट के पास, मरीज के पास जब पेशेंट आता है तो वो फिर देखा जाता है कि उसकी नोयत क्या है,
0: ऐसी बात है जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता है,
2: इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको जड़ी बूटी या कोई आपका इरादा बनता है आप खाली सुनी सुनाई बातों पे ना करें, आप एक दफा अपने मुआलिज से जरूर मशवरा कर,
0: लाजमी बात है,
2: क्या पता आपकी वो जो उस चीज की ज्यादती है वो सूदमंद भी है कि नहीं है,
0: ऐसी बात
2: है, तो मुआलिज कम अज कम आपको मशवरा दे के बता सकते हैं कि आपको कितनी मिकदार में लेनी है और इसे कब तक लेना है,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
2: बाकी इसकी अभी चाय की बात हो रही थी तो आप इसकी चाय भी बना सकते हैं, इसके खुशक पत्तों की, या कावा भी बना सकते हैं, तो वो आपके मैदे की भी सलाह करेगा,
0: ठीक है,
2: आपके बढ़े हुए पेट पे भी काम करेगा, आपकी जो जायद चर्बी है उसको भी जिस्म से खारिज करने में मदद करेगा और आपका वजन जो है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि मुतवाजन,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
2: तो बाकी हर चीज है लेकिन उसका इस्तेमाल का तरीका वो जरा मुख्तलिफ होता है, बच्चे हैं तो बच्चों को भी एक मिकदार में दिया जाता है, बड़े हैं तो बड़ों को भी एक उसकी मिकदार है, उससे ज्यादा नहीं पड़ा जाएगा, और जहां तक है कोशिश करें कि या तो फिर आप खुद लें
0: जी
2: और इसको खुशक कर लें, नहीं तो आजकल तो इसकी जो पैकिंग है वो भी आई हुई है बाजारों में,
0: जी ऐसी बात है,
2: कंपनियां इसको पैकिंग में करते हैं और बड़ा खुशनुमा और अच्छे खासे उन्होंने अपने रेट्स भी रखे हुए,
0: ऐसी बात
2: है, ये इस्तेमाल हो रहा है। बाकी इसको हर एक चीज को, चाहे वो देसी है चाहे जो भी है, लेकिन उसको हतमी इलाज ना समझे, उसको आप एक टेम्परेरी कह लें कि आप उसको एक खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें और उसकी अफादियत जानने के लिए या उसके नुकसान जानने के लिए अपने मुआलिज से मशवरा कर लें, क्योंकि इसको रूटीन से नहीं लेना चाहिए,
0: ऐसी बात है,
2: एक आदमी रोजाना ले रहा है तो कम से कम वो मुआलिज से मशवरा कर ले कि मेरे लिए ये सप्लीमेंट जो है ये जरूरी भी है कि नहीं है, या इसकी मिकदार कहीं मुझे इसकी ज्यादती जो है कोई नुकसान तो नहीं देगी। तो बाकी कुदरत ने तो हमें बहुत सी गिजाएं दी हैं, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा है। बाकी उनमें से ये भी एक है मोरिंगा, जब हम आगे चलेंगे तो बेशुमार ऐसी खुराक, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल सामने आएंगे कि जिनको हम बिल्कुल ही आम सा समझते हैं,
0: ऐसी बात है,
2: लेकिन वो हमारे जिस्म को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
2: बाकी इसका जो है इसमें जाहिर है विटामिन है, फाइबर्स है, इसमें पोटाशियम है, इसमें बेशुमार मरकबात,
0: बिल्कुल ऐसी बात है,
2: लेकिन इसको आप फिर भी हतमी तौर पर नहीं ले सकते हैं, कि मैं इसको शुगर के लिए अपनी तौर पे ले लूं, मैं इसे जिगर के लिए ले लूं, मैं इसे खून की कमी के लिए ले लूं, या मैं इसको किडनी प्रॉब्लम में ले लूं। आप लेंगे लेकिन एक मुनासिब

के राजा इस तासो मैसेज बरेड के महा पसीपर 342 311 22 वाहन में सिपर 342 311 22 वाहन में बनु के पा अंदरूनी लकी गेट की हाफिज जहीर सर देश में तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई की पजानजी भी गिल्ली पशोहे भी मार्केट के वजह तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई की सईदा और बस देखा नूर बस्ता सुमे के सईदा लकी मरवत के पगिरानो मार्केट की चिकम देनो हाफिज इधरी सर देश में तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई की सईदा मैसेज बस्ता सुरुट गोम पसी पर 342 311 और 22 वाहन में बने हाँ सिपर 342 311 22 वाहन में बांधे हाँ।

पास आपका व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल नंबर पे कॉल किया करिए भाई साहब। जमील खान लंडीवा सलामकुम अजी से आवाज से बिल्कुल ओके थे हाँ, चीफ ऑफ लंडीवा दोनों मन लेकिन लगता से और बड़े खराब खराब बोला रोबा से कम दिनों लंडीवा तजी हाँ दोनों डेरे ज्यादा मनना।